सुप्रभात। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कहा है, जो भारी कोलाहल में भी संगीत को सुन सकता है वह महान उपलब्धि को प्राप्त करता है। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है वंदना। सबसे पहले नमन अपनी मातृभूमि को, जिसके सुरभित परिवेश

जानिसार अख्तर का लिखा ये देशभक्तिपूर्ण गीत अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में। श्रोताओं, भक्ति का हर एक माध्यम हमें अपने प्रभु से जोड़ता है। सामूहिक भजन कीर्तन मन को आनंदित करते हैं, वहीं शांत और स्थिर चित्त से की गई प्रार्थना हमें अपने आराध्य के निकट अनुभव कराती है।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु का दिया एक अनमोल उपहार है। इसे सत्कर्मों, परोपकार और प्रेम के सद्मार्ग पर अग्रसर करना ही उनके दिए इस जीवन का सच्चा सम्मान करना है।

हरिओम शरण के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। इस संसार रूपी भवसागर में हमारी जीवन नैया के खेवनहार हमारे आराध्य ही हैं। उनकी इच्छा से ही हमारे सभी कार्य सफल होते हैं, और कहा भी गया है, ईश्वर इच्छा बलियसी।

इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रकाश किरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए महाभारत में क्षमा का महत्व। स्वर दामोदर शास्त्री का है।
1: क्रोध पाप का मूल है, इसे हम सब अनुभव करते हैं। क्रोध में हिंसा का वास होता है और हिंसा विनाश की जननी है। हिंसा के वातावरण में घर परिवार, समाज, यहाँ तक कि राष्ट्र भी विनष्ट हो जाता है। क्रोध को जीतने का एकमात्र उपाय है क्षमा भाव। महाभारत में क्षमा का महत्व प्रकट करते हुए कहा गया है, द्वाविमौ पुरुषौ राजन् स्वर्गस्यो परितिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। तात्पर्य यह है, ऊंचे स्वर्गादि लोगों में दो प्रकार के व्यक्ति ही पहुंच पाते हैं। एक तो वह व्यक्ति जो दरिद्र व निर्धन होता हुआ भी दूसरे को कुछ देता है, और दूसरा वह व्यक्ति जो सामर्थ्यवान एवं शक्तिशाली होते हुए भी दूसरों के प्रति क्षमा भाव बनाए रखे। क्षमा धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य कुंदकुंद ने कहा है, को हुपत्तिस्सपुणो बहिरंगम यदि हवेदि सखादम अणकुनदि किंच विकोहो तस्सखमाहो दिधम्मोति। तात्पर्य यह है कि क्रोध की उत्पत्ति का बाहरी पर्याप्त कारण होते हुए भी क्रोध का भाव मन में उठे ही नहीं, ऐसी मानसिक शांति वाला व्यक्ति ही महान धार्मिक गुण क्षमा का धारक कहा जा सकता है। महाभारत के प्रसिद्ध चरित्र नायक, चरित्र पात्र तथा महान कुशल नीतिज्ञ महात्मा विदुर जी ने क्षमा के महात्म्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है, क्षमा गुणो यशक्तानां शक्तानां भूषणम क्षमा शांति खड्गो करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा। अर्थात क्षमा जहाँ दुर्बल व्यक्तियों के लिए आवश्यक व उपयोगी गुण है, वहाँ वह समर्थ व शक्तिशाली लोगों का सुंदर आभूषण भी है। जिसके हाथ में शांति की तलवार है, उसका कोई दुर्जन बिगाड़ ही क्या सकता है। प्राचीन भारत के महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने भी क्षमा के विषय में सुंदर विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं, क्षमा तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न च तृष्णा परो व्याधि न च धर्मो दया परः। अर्थात जैसे तृष्णा के समान कोई व्याधि या बीमारी नहीं होती, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता और संतोष के समान कोई सुख नहीं होता, वैसे ही क्षमा से बढ़कर कोई तप नहीं होता। महात्मा बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में शांति व क्षमा पर जोर देते हुए कहा था, नहीं वेरेण वेराणी सम्मंती ध कदाचन अवेरेण च सम्मंती एस धम्मो सनातनो। तात्पर्य है कि यह एक सनातन धर्म अर्थात अटल नियम है कि वैर से वैर की समाप्ति नहीं की जा सकती। वैर से तो वैर की परंपरा बढ़ेगी ही। शत्रुता या वैर को समाप्त करने का यही उपाय है कि वैरी या शत्रु के प्रति अपने मन से शत्रुता के दुर्भाव को ही हटा दिया जाए। क्षमा गुण रूपी वृक्ष का पौधा निरभिमानता व सहनशीलता की भूमि में ही पनप सकता है, इसलिए महाभारत में कहा गया है, अतिवादांस्तिखेत नाभिमन्येत कंचन क्रोध्यमानः प्रियं ब्रूयात आकृष्टः कुशलं वदेत्। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि कोई कुछ बुरा भला कहे तो उस पर क्रोध करने की बजाय सहनशीलता का ही प्रदर्शन करे, किसी भी परिस्थिति में अभिमान को प्रकट न करे, और कोई ऐसी बात कह भी दे जिस पर क्रोध आना स्वाभाविक हो तो कहने वाले को प्रिय व हितकारी वचन ही कहे। वस्तुतः क्षमा तो सत्पुरुषों का एक स्वाभाविक गुण है, इसीलिए महाभारत में कहा गया है, अक्षमाया क्षमायाश्च प्रियाणि हा प्रियाणि च क्षमते सम्मतः साधु साध्ववाप्नोति सत्यवाक्। अर्थात वही व्यक्ति सत्पुरुषों की श्रेणी में परिगणित होता है और सत्य का साधक कहलाने का अधिकारी होता है जो न सहने लायक व्यवहारों में अप्रिय वचनों को सुनकर भी क्षमाशील रहता है और पूर्ण रूप से अविचलित रहता है।
0: प्रकाश किरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे महाभारत में क्षमा का महत्व। वाचक स्वर दामोदर शास्त्री का। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को हैं। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानी और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ना जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधिपूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर श्रीकांत पारगांवकर का। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिकी। आज का विषय है परवल की खेती।
1: किसान भैया हरो, अपन में से बहुत से किसान भैया हरे सब्जी की खेती करते हैं, और जैसे कि अपन जाना थे कि सब्जी एक नगदी फसल होवे के कारण आमदनी को सबसे अच्छा साधन होते है। कई भैया हरे परवल की खेती करते हैं, और परवल जो है खीरा वर्गीय सब्जियों में से एक है, और परवल बहुवर्षी सब्जी है। किसान भैया हरो, परवल से अच्छी आमदनी के लाने जरूरी है कि अपन कछु बातों को ध्यान रखें। तो भैया परवल की जो खेती है वह गर्म और आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में आसानी से करी जा सकत है। जहाँ तक जमीन को सवाल है तो एके लाने भारी भूमि को छोड़ के अन्य सभी प्रकार की जो जमीन होत है वह अच्छी होत है। मनो एक बात को ध्यान अपन के जरूर रखने हैं कि जहाँ अपन परवल की खेती कर रहे हैं उतय जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, उतय की माटी जीवांश युक्त हो, तो उतय पे अपन के अच्छी पैदावार मिलत है। विशेषकर अगर अपन देखें तो दोमट और रेतीली भूमि अगर आपके आसपास या ऐसी जगह जहां आप परवल लगा रहे हो उतय पे है तो वह बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी जमीन होत है। परवल की फसल ज़्यादा पानी नहीं सह पाए, एके लाने अपन ऐसी जगह को चुनाव करें कि जो थोड़ी ऊंचाई पे होए और अच्छे पानी निकास की उतय पे व्यवस्था हो। खेत की तैयारी करत समय अपन का करें कि पहली जुताई मिट्टी पलटवे वाले हल से करें, एके बाद दो तीन बार कल्टीवेटर चला लेवें। परवल की खेती में उर्वरकों को विशेष महत्व होते है, तो एके लाने प्रति हेक्टेयर

0: 120 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 50 ग्राम यूरिया के साथ 2 किलो गोबर की खाद अगर अपन ये फसल में देते हैं तो अपन के पैदावार अच्छी मिलत है। खाद अपन ऐसो दें कि पौधा के चारों तरफ जब बिथर जाए, जाने कि एक जगह अगर अपन ने रख दई और अपनों काम पूरा होगा, अपन ऐसो दें कि पौधा के चारों तरफ जब अपन खाद रखें तो जनों की जड़ें फैल रही हैं, उन प्रत्येक जड़ में वो खाद के जब अवशोषण करें प्रत्येक जड़ तो की पौधा की बढ़वार अच्छी हुई है। जमीन की तैयारी करत समय 50 से 60 टन गोबर की खाद और 15 से 16 टन अरंडी की खली अगर अपन ये फसल के लाने देते हैं तो बहुत लाभदायक होते हैं। किसान भैया हरो, परवल की बहुत सी किस्में आती हैं और अपन अपनी जमीन, अपने इते के मौसम और अपने इते सब्जी फसल की मांग के हिसाब से किस्मों को चयन कर सकते हैं। जैसे पहली किस्म है HP1। एक फल हरे धारियों से युक्त होते हैं और वजन 20 से 30 ग्राम प्रति फल होते हैं। ऐसा ही HP3 फल 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे मोटे होते हैं, इनमें धारी सोई होती हैं और गूदा जब अपन इन्हें काटते हैं जो इनके अंदर गूदा होते हैं वो थोड़ी सो पीलेपन लय होते हैं और कहूँ कहूँ सफ़ेद सोई गूदा रहते हैं और इनको वजन 25 से 30 ग्राम, एक फल को वजन की बात हम कर रहे हैं, 25 से 30 ग्राम होते हैं। HP4 एको फल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबो मोटो चिकनो हल्के हरे रंग को होते है, गूदा एको सफेद होते है और एक फल को वजन 20 से 30 ग्राम होते है। HP5 एको फल जोन है 6 से 8 सेंटीमीटर लंबो और मोटो होते है, हल्के हरे रंग को होते है और इनमें धारियां सोई होती हैं। एक फल को जोन है भार 20 से 25 ग्राम तक होते है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारी आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सुबह 9:10 पर प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, और आज सुबह 11:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे मन की बात। इसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रोताओं से अपने मन की बात साझा करेंगे।

श्रोताओं, आज शाम 6:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल जारी रहेगा 7:21 से और रात्रि 9:15 से।

आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहान आज सुबह 9:30 पर और दिन में 2:30 पर बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा सुबह 10:20 पर, और फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा आज सुबह 8:30 पर।

सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी आज की दोनों सभा के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35-तमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्यान्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज़ आन् ए आई आर् इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शनवार्ता प्रधानमन्त्रिकार्यालय सूचनाप्रसारणकार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दीभाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीयभाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिकसहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रियविषयेषु मतानाम् आदानप्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रियसभां सम्बोधयिष्यति। भारतीयप्रवासिसदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रियदिवससमारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीयरक्षाबलानाम् एकेन दलेन सह भारतीयनौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य 3-दिवसीययात्रायां विक्टोरियानगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार संधेः CETA इत्यस्यान्तर्गतं उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मंत्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदंडानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली सर्वकारः शीघ्रमेव कठोरं निरीक्षणं बृहत्तरं उत्तरदायित्वं छात्राणां सुरक्षां च सुनिश्चेतुं दृढं विनियामक विधिं प्रावर्तयिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। बिहार छत्तीसगढ़ कर्नाटक कोंकण गोवा ओडिशा तमिलनाडु पुदुचेरी करैकल तेलंगाना विदर्भ लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीपेषु अपि आगामी दिनद्वयोः कृते विभागेन संचेतना प्रसारिता अस्ति। ऋतु विभागेन ख्यापितं यत् श्वः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिं भविष्यति। फीफा विश्वकप क्रीडायां इंग्लैंड देशेन अद्य प्रातः अमेरिका देशस्य न्यूजर्सी क्रीडांगणे स्वस्य ग्रुप एल क्रीडायां पनामा देशं 2-0 इत्यंकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता संबद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु कीमतों को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche-Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to the Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 this morning. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR News website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah, who is on a three-day visit to Gujarat, will officially launch the PM Family Care Tracker pilot project in Gandhinagar this evening. This new initiative is aimed at improving health care tracking and welfare accessibility for families. Earlier in the day, Mr. Shah will attend a special Chintan Shivir for booth presidents and Shakti Kendra in charges in Ahmedabad, during which he will review grassroots strategies and interact with local party members. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private tour operators. In a statement, the ministry said it is in receipt of several requests for help and assistance from Indian citizens stuck in Nepal while undertaking Kailash Mansarovar Yatra without the required entry permit and visas for China. It said citizens are advised not to commence their journey from India until all the required travel documents have been obtained for undertaking the complete journey. Union Ministers of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel has said that India has made significant progress in healthcare over the past 12 years and is working toward the broader goal of universal health coverage, ensuring accessible, affordable, and quality healthcare for every citizen. Speaking at the 9th edition of the Doctors' Day Conclave of a private media channel program, Ms. Patel highlighted Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as one of the world's largest health assurance programs, covering around 62 crore people, and said it is helping families access treatment with financial protection. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugale to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi Police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. In the FIFA World Cup, England defeated Panama 2-0 in their Group L match at New Jersey Stadium in the United States this morning. Jude Bellingham and Harry Kane scored a goal each as England secured the top spot of Group L. Goa's 14-year-old international master Ethan Vaz has become India's 96th chess grandmaster after securing his third and final grandmaster nom at the Sarajevo GM Mix tournament in Bosnia and Herzegovina. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जताया विश्वास। आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान, 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
1: नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमाइनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र किया।
2: 16 क्लस्टर का निर्माण करते हुए हमने इंदौर का तेजस इंडस्ट्रियल पार्क, इंफ्रास्ट्रक्चर क्लस्टर, धार का अमझेरा क्लस्टर, 14 नए क्लस्टर भी बनाने जा रहे हैं ODOP के माध्यम से भी। जिस प्रकार से हमारे अपने एक जिला एक उत्पाद में के GI टैग भी अकेले 25-26 में हमारे पास 20 GI टैग मिले। हमारे लिए आने वाली GIS भी भोपाल में ही होने वाली है, जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हुए एक बार फिर संकल्प लिया है।
0: इस अवसर पर उन्होंने MSME इकाइयों को लगभग 225 करोड़, विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृहद उद्योगों के लिए 1274 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में सुश्री पटेल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत में अब लगभग 1,84,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, जो रोगियों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य कर रहे हैं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
4: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत आज से 30 जून तक 5 वर्ष तक की आयु के प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियोरोधी वैक्सीन की अतिरिक्त खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कल 29 एवं 30 जून को घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। झाबुआ जिले में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया जिला चिकित्सालय में अभियान का शुभारंभ करेंगी। जिले में 2,13,504 बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य है। रायसेन जिले में लगभग 1,84,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। GI टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। इसमें 1 मीट्रिक टन आम शामिल थे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से वैश्विक बाजारों में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले कई महीनों से एपिडा ने मध्य प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग निर्यातकों किसान उत्पादकों संगठनों पैकिंग हाउस संचालकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस उत्कृष्ट किस्म के आम के निर्यात के लिए पार्क स्थापित करने का काम किया है। राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने भुवनेश्वर में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में 20.40 मीटर की प्रभावशाली थ्रो करते हुए रजत पदक अर्जित किया। समरदीप सिंह ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर एशियाई खेल 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफिकेशन मानक भी प्राप्त कर लिया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने समरदीप सिंह को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन और नर्मदापुरम जबलपुर रीवा ग्वालियर शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। माँ शारदा की नगरी की धरोहर और विश्वविख्यात मैहर वाद्य वृंद को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। मैहर बैंड की इस अनूठी संगीत परंपरा को जीवंत रखने और आगामी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग द्वारा शासकीय संगीत महाविद्यालय मैहर के माध्यम से एक गुरुकुल की स्थापना भी की जा रही है। इस गुरुकुल के पद्धति से प्रशिक्षित होकर युवा कलाकार मैहर बैंड के अनूठे संगीत रागों और इसकी गौरवशाली गुरु शिष्य परंपरा को और अधिक समृद्ध कर सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात बैतूल जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में ग्रामीण शानू मंगल भुसुमकर के निवास पर रात्रि भोजन किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल सतना जिले के चित्रकूट में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में आयोजित समारोह में सदगुरु आई केयर एजुकेशन अकेडमी का शुभारंभ किया। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कल दमोह जिले के नोहटा स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित कर क्षेत्र के नागरिकों की समस्याएं सुनी। प्रदेश पुलिस का 15 दिवसीय साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 झाबुआ में चल रहा है, जिसके सभी थाना क्षेत्रों में साइबर जागरूकता रथ और रक्षा सखी टीम लोगों को जागरूक कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में आज सुबह 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। आगामी 20 वर्षों में प्रदेश शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जताया विश्वास, आज से 30 जून तक पल्स पोलियो अभियान 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। गुड मॉर्निंग जबलपुर।

दोस्तों, हमारी दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है आपके रेडियो सेट, मधुर गीत, कड़क चाय और अखबार की सुर्खियां पढ़ते हुए, है ना। इस दौरान हम दिन भर की सूची भी तैयार कर लेते हैं, जैसे रसोई, ऑफिस, बच्चों का स्कूल, शॉपिंग, थिएटर, मनोरंजन, और इन सब में क्या महत्वपूर्ण है जो हमें दिन भर में सबसे पहले करना है और हमारा दिन अस्त व्यस्त भी ना हो और सभी आवश्यक कार्य भी पूरे हो जाएं, और इन सभी कार्यों की भागदौड़ में हम सारा दिन ऊर्जावान रहें, इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है। वो है प्रातः की ताजी शीतल वेला में स्वयं को समय देना। जी हाँ श्रोताओं, खुली हवा में सांस लेना और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, क्योंकि योग के वैज्ञानिक और चिकित्सकीय लाभ अब सारा विश्व मानता है और योग हमारी दिनचर्या को ऊर्जावान और अनुशासित बनाता है। इसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ हमें स्वतः ही अनुभव होते हैं, और वैसे भी योग प्राचीन भारतीय विज्ञान और जीवन शैली है जिसे संपूर्ण विश्व ने अपनाया है।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुन रहे थे कैफी आजमी की शब्द रचना, स्वर मन्ना डे, किशोर कुमार, लक्ष्मी शंकर और निर्मला देवी का, संगीतकार मदन मोहन। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की प्राचीन योग विद्या की। योग के कितने सारे फायदे हैं ये आप हम सभी जानते हैं कि योग अभ्यास शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, शरीर का लचीलापन, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, वहीं ध्यान और प्राणायाम मस्तिष्क को शांत रखते हैं जिससे स्मरण शक्ति और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। हमारे देश की इस प्राचीन विद्या का महत्व विश्व स्तर पर छा गया है और हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विविध आयोजनों में योगाभ्यास कराया जाता है और दोस्तों, हम में से कई लोग इसका हिस्सा भी बने।

राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी की शब्द रचना अभी आप सुन रहे थे। मन्ना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा चित्तर और साथियों के स्वर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और फिल्म का नाम शोर। साथियों, यूं तो हर दिन कुछ न कुछ महत्वपूर्ण घटित होता रहता है जो उस दिन को यादगार बना देता है, जैसे कोई खगोलीय या पर्यावरणीय घटना, धार्मिक उत्सव या फिर किसी महान हस्ती का जन्म दिवस या पुण्यतिथि। ये दिन हमारे लिए खास बन जाता है और इसी क्रम में आज हम याद कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता, वकील और राजनेता को, जिन्होंने आजीवन देश सेवा की, जो हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। आज दिनांक 28 जून को हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें हृदय से नमन करते हैं। दोस्तों, पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव जी सन 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे दक्षिण भारत के पहले और गैर हिंदी भाषी पृष्ठभूमि से दूसरे प्रधानमंत्री थे। पेशे से कृषि विशेषज्ञ एवं वकील श्री राव ने राजनीति में पदार्पण किया और कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में कानून एवं सूचना मंत्री, कानून एवं विधि मंत्री, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर भी कार्यभार संभाला। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव, तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष के पद भी संभाले। श्री राव की रुचि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति, कथा साहित्य, राजनीतिक टिप्पणी लिखने में और भाषाएं सीखने में, कविताएं और साहित्य में भी थी। ऐसी बहुआयामी विद्वत हस्ती को हम शत-शत नमन करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं।

तपस्या फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में, शब्द रचना और संगीत रविंद्र जैन का। गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में पेश है संगीतिका संडे। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी के स्वर में शैलेंद्र की शब्द रचना, संगीतकार शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम प्रोफेसर।

0: पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल।
1: संगीतिका संडे में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया बेमिसाल फिल्म का ये नगमा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

तो श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे कहना चाहेंगे कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है और योग ही इसकी कुंजी है। प्रतिदिन कुछ मिनट के अभ्यास से आप खुद में एक सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे, इसलिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। श्रोताओं, आज की चर्चाओं ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा और गीतों ने मनोरंजन, ऐसी हम आशा करते हैं। कुछ और रोचक चर्चाओं और गीतों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम में। अब आज के गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अस्मिता को। नमस्कार।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजे हैं, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य

0: से दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
6: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है।

0: अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमरीका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी

0: खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेंजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आशा भोसले के गाए इस गीत के बाद लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में योगेश की शब्द रचना, संगीतकार राजेश रोशन, फिल्म का नाम बातों बातों में।

बातों बातों में फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा बेताब फिल्म का ये गीत। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और स्वर शब्बीर कुमार का है।

क्रोधी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार के स्वर में मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, तर्ज बनाई राहुल देव बर्मन ने।

फिल्म संगीत के आखिर में लीजिए सुनिए अगर तुम ना होते फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: देश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम

0: की 135वीं कड़ी होगी। सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर कल प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल में सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वे सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल रात बैतूल जिले के प्रवास के दौरान प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में ग्रामीण शानु मंगल भुसुमकर के निवास पर रात्रि भोजन किया। जीआई टैग वाले रीवा सुंदरजा आमों की पहली वाणिज्यिक निर्यात संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गई है। इसमें 1 मीट्रिक टन आम शामिल थे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है और अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। और राज्य एथलेटिक्स अकादमी के समरदीप सिंह ने भुवनेश्वर में 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कल पुरुष शॉट पुट स्पर्धा में 20.40 मीटर का प्रभावशाली थ्रो करते हुए रजत पदक अर्जित किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक रसधार। आज के कलाकार हैं खेदू सिंह और साथी। लीजिए सुनिए इनके गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक रसधार कार्यक्रम, आज के कलाकार खेदू सिंह और साथी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
1: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
2: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद SLRM सेंटर में आता है जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबका वहां सेग्रीगेशन होता है। और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो SLRM सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वाशिंग होती है, वाशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया। दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपए से लेकर 60-70 रुपए किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा जो हम लेबरों से

0: अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक पे एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पे डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपए के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, चूंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है, बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक अलार्म सेंटर है, चूंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है, जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा अलार्म सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
0: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप?
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहां पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या? तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपए किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपए किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपए भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपए में इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है।
1: ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा, क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपए मेरे को आप टोकन का रीडिंग आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं, जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ कोई भेदभाव हो ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे?
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ, अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है खासकर जो कचरे का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं है कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं, तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है और साफ सुथरी प्लास्टिक जहां प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनकी तरफ।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और दिल्ली में शायद 27 या 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था तो 21 संभवतः दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि एक किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, एक किलो लोहा और एक किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। एक किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें। मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज़ किए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, एक किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है। तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है। उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज कैफे
1: पड़ा,
0: बिल्कुल
1: असर वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं तो उससे लोगों के मन में भी एक आया कि नहीं ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको, ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूं कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है कि रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है गार्बेज कैफे संचालन का, एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते टेंडर करते कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी। तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि सबसे मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का जो प्रीमियम है वो देना होगा और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हम लोग फिक्स कर दिया था। उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22, तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया। तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं। कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी इनिशिएटिव
1: टॉकीज में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी है, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है। तो इस तरह के बच्चे का इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह के चीजों पर भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर
0: इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15 20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कुरियर कर दिया।
1: मैंने एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह
1: जापान कोरिया।

0: या यहाँ से भी
1: सभी जगह
0: प्रशंसा आई थी,
1: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहाँ पे ले रहे हैं। और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
0: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहाँ से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति है रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

सिंधियत जी सिरहाण में अॼु वरी क़बूलींदा हर्षा जी सिक भरी नमस्ते। जय झूलेलाल। ॿियो साथियो, बरसाति शुरू थी वई आहे न तव्हांजे बि शहर में ऐं असांजे बि शहर में। थोरो थोरो थधिकार थी वियो आहे ऐं रातियूं त मस्तु बहारी मौसम आहे। ऐं अहिड़े में गुल बूटा सभु उगाइण जो बि मौसम आहे। छो त ॾिसो न, हाणे जुलाई जो महीनो बचण वारो आहे। बरसाति जी मुंद यानी मॉनसून जी तयारी पूरी आहे ऐं इहा मुंद वणनि ऐं ॿूटनि खे वधण जो सही वक़्तु आहे। वन महोत्सव सप्ताह बि हर साल 1 जुलाई खां 7 जुलाई ताईं मल्हायो वेंदो आहे। पर्यावरण संरक्षण लाइ, माण्हुनि में सुजाॻी वधाइण लाइ हिन में ख़ासि तौर सां वृक्षारोपण माना वण उगाइण ते ज़ोर ॾिनो वेंदो आहे त चौधारी हरियाली थिए। इन लाइ तव्हां बि वण ऐं गुलनि जा ॿूटा ज़रूरु लॻाईंदव ऐं ॿियनि खे बि हिमथाईंदव, इहा उमेद तव्हां सां कयूं था। साथियो, तव्हांखे संत कबीर जी त यादि हूंदी ई। कबीर जा दोहा त केतिरा न मशहूरु आहिनि। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हिंदी साहित्य जी अनमोल धरोहर, जंहिं जीवन जी सच्चाई, नैतिक मूल्य ऐं ईश्वरीय भक्तिअ जो ज्ञान ॾिनो। अहिड़े महान कवि, दार्शनिक ऐं समाज सुधारक संत कबीरदास जो जनम 29 जून ते थियो हो। सुभाणे 29 जून आहे, संत कबीर जी जनम जयंती आहे। जात पात, मूर्ति पूजा ऐं धार्मिक पाखंडनि जो विरोध करे हिंदू मुस्लिम एकता जो संदेश ॾियण वारे संत कबीरदास जी जनम जयंतीअ ते केतिरनि ई हंधि सत्संग, कवि सम्मेलन ऐं ॿिया कार्यक्रम बि आयोजित कया वेंदा आहिनि। संत कबीरदास जो जीवन ईस्वी सन 1398 खां 1518 ताईं रहियो। हू हिंदी साहित्य जे भक्ति काल जी निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा जो महान कवि, दार्शनिक ऐं सुधारक हो। कबीरदास खुदि पढ़ियलु कोन हो, हुन कॾहिं कलम बि हथ में कोन खई हुई, पर हुन जा वीचार तमामु हुन हुआ। हू पाण चवंदो हो, मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हुन जे शागिर्दनि माना सिखनि हुन जी मौखिक वाणी ऐं दोहा गॾु करे हुन जो मज़मू तयारु कयो। उन लाइ राम ऐं रहीम बि हिकु ई हुआ। हुन जी वाणीअ में गुरुअ खे

ईश्वर खां बि ऊचो मुक़ाम हासिलु आहे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाईए, मन ही की प्रतीत। माना पंहिंजो मनोबल सदाई ऊचो रखणु घुर्जे। मन जे विश्वास सां ई परमात्मा जी प्राप्ति थींदी आहे। अहिड़े ज्ञानी महापुरुष संत कबीरदास खे आकाशवाणी परिवार जो नमन आहे। ऐं हिन ज़रूरी ॼाण खां पोइ हाणे हलो त ॿुधूं था ही गीत। लाडली फिल्म जो ही गानो मास्टर चंदर कमला केसवाणी ऐं गुरदास जी आवाज़ में, गोवर्धन भारतीय जी रचना, सी अर्जुन जो संगीत।

0: ॿियो त साथियो, हर साल 1 जुलाई ते सिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी जयंती ऐं पुण्यतिथीअ जे रूप में यादि कयो वेंदो आहे। चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय भारत रत्न सां बि सम्मानित हो ऐं पश्चिम बंगाल जो ॿियों मुख्यमंत्री रहियो। त सभिनीनि डॉक्टरनि खे इन ॾींहं जूं खोड़ खोड़ वाधायूं ऐं शुभकामनाऊं। साथियो, हिकु वॾी समस्या अॼुकल्ह असां ॾिसी रहिया आहियूं, प्लास्टिक जी। प्लास्टिक प्रदूषण धरतीअ लाइ हिकु वॾो ख़तरो बणिजी वियो आहे। हिन कचिरे जो भूमि, जल ऐं वायु में जमा थियणु पर्यावरण, वन्यजीव ऐं मानव स्वास्थ्य खे गंभीर नुक़सान पहुचाईंदो आहे। ऐं इन ई सबबु हिकु वार्ता ॿुधूं था शिक्षा ऐं समाज सेवा जे खेत्र सां जुड़ियल श्रीमती अमृता मोटवाणी खां।
1: कार्यक्रम ॿुधण वारनि सभिनी भाउरनि ऐं भेनरुनि खे सिक भरियल जय झूलेलाल। अॼु असां हिकु अहिड़े मसले ते ॻाल्हाईंदासीं जेको न सिर्फ़ु असांजी ज़िंदगीअ खे पर असांजी धरती, पाणी ऐं हवा खे बि प्रभावित थो करे। अॼु जंहिं तरफ़ नज़र कंदासीं तंहिं तरफ़ प्लास्टिक जो इस्तेमालु नज़र थो अचे। बाज़ारि मां सामान वठी अचण लाइ थेली हुजे, पाणीअ जी बोतल हुजे या खाधे पीते जी पैकिंग, प्लास्टिक असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जो हिसो बणिजी वियो आहे। पर जंहिं शइ असांजी ज़िंदगीअ खे सवलो ठाहियो आहे, सा ई अॼु पर्यावरण लाइ हिकु वॾी समस्या बणिजी वई आहे। सोचियो तव्हां समुंड जे किनारे ते था वञो, लहरुनि जी मिठी आवाज़, थधी हवा ऐं कुदरत जी ख़ूबसूरती दिलि खे ख़ुशि करे रही हुजे, पर हिकदमि तव्हांजी नज़र रेत ते पियल प्लास्टिक जूनि शयुनि यानी कि थेलियूं, बोतलुनि ऐं कचिरे ते थी पए। उहो नज़ारो कुदरत जी सॼी सूंहं खे फिको करे छॾींदो। हीउ सिर्फ़ु हिकु समुंड जे किनारे जी ॻाल्हि कोन्हे, अॼु धरतीअ जी शायदि ई का अहिड़ी कुंड हुजे जिते प्लास्टिक जो कचिरो न पहुतो हुजे। असांजी सुविधा लाइ ठहियल प्लास्टिक अॼु पर्यावरण, जीव जंतुनि ऐं इंसानी सिहत लाइ हिकु गंभीर चुनौती बणिजी वियो आहे। हिननि समस्याउनि खे ॾिसी हर साल 3 जुलाई खे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मल्हायो वेंदो आहे। हीउ दिवस असांखे यादि ॾियारींदो आहे त जागण जो वक़्तु हाणे आहे। जेकॾहिं असां अॼु जागरूक न थियासीं त पोइ अचण वारियुनि पीढ़ियुनि खे साफ़ सुथरी ऐं सुरक्षित धरती ॾियणु मुश्किल थी वेंदो। हाणे अचो त समझूं त आख़िर प्लास्टिक थींदो छा आहे। प्लास्टिक हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका इंसाननि ठाही आहे। हीअ मुख़्तलिफ़ रसायननि खां गॾे तयारु कई वेंदी आहे। प्लास्टिक जी सभिनी खां वॾी ख़ासियत इहा आहे त इन खे आसानीअ सां कंहिं बि आकार में ढाले थो सघिजे। इहो ई कारण आहे जो अॼु असां सभिनी पासे नज़र विझूं त ॾिसंदासीं त घणियूं ई शयूं प्लास्टिक मां ठहियल हूंदियूं आहिनि। सुबुह जो उथण सां वठी करे राति जो सुम्हण ताईं असां चङा ई भेरा प्लास्टिक जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। असांजो टूथब्रश, बोतलूं, पेन, मोबाइल जो कवर, खीर जी पैकिंग ऐं बाज़ारि मां वठी अचण वारो सामान, इन्हनि मां घणियूं ई शयूं प्लास्टिक सां ठहियल हूंदियूं आहिनि। प्लास्टिक हल्को हूंदो आहे, जल्दी ख़राब न थींदो आहे ऐं सस्तो बि हूंदो आहे। इहो ई कारण आहे जो अॼु असांजी पहिरीं पसंदि प्लास्टिक बणिजी वियो आहे। पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं वजह सां प्लास्टिक लोकप्रिय थियो आहे, साई अॼु चिंता जो कारण बणिजी वई आहे। हाणे सवाल आहे त प्लास्टिक ठहंदो कीअं आहे। घणो करे प्लास्टिक पेट्रोलियम ऐं प्राकृतिक गैस सां ठहंदो आहे। कारखाननि में हिन खे तयारु कयो वेंदो आहे, हिन खे गरम करे मुख़्तलिफ़ आकार ॾिनो वेंदो आहे ऐं हिन सां बोतलूं, थेलूं, रांदीका, दॿा ऐं ॿियूं घणियूं ई शयूं ठहंदियूं आहिनि। प्लास्टिक जा बि घणा ई प्रकार थींदा आहिनि। का मज़बूत ऐं सख़्तु हूंदी आहे त का सन्ही ऐं नरम हूंदी आहे। कंहिंजो इस्तेमालु घणे टाइम ताईं कयो वेंदो आहे त का सिर्फ़ हिकु दफ़ा इस्तेमालु करण वारी हूंदी आहे। हितां खां सिंगल यूस प्लास्टिक जी समस्या शुरू थींदी आहे। सिंगल यूस प्लास्टिक उहो प्लास्टिक आहे जंहिंजो इस्तेमालु सिर्फ़ हिकु दफ़ा कयो वेंदो आहे ऐं पोइ इन खे फिटी करे छॾिबो आहे। मिसाल तौर ते प्लास्टिक जूं थैलियूं, डिस्पोज़ेबल कप, प्लेट, चिमचा, स्ट्रॉ ऐं बोतलूं। ज़रा सोचियो, जिन शयुनि जो असां सिर्फ़ु कुझु मिंटनि लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, से धरती ते सैकड़नि सालनि ताईं पयल रही सघनि थियूं। इहो ई कारण आहे जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक अॼु सॼी दुनिया लाइ हिकु वॾी समस्या बणिजी वई आहे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक सिर्फ़ कचरो ई न वधाईंदो आहे पर पर्यावरण खे बि घणो ई नुक़सान पहुचाईंदो आहे। जॾहिं असां प्लास्टिक जी थैली, बोतल या पैकेट जो इस्तेमालु करे फिटी कंदा आहियूं त उहो सवलाईअ सां ख़त्मु न थींदो आहे बल्कि सालनि जा साल धरतीअ खे नुक़सान पियो पहुचाईंदो आहे। चङाई भेरा उहो नालियुनि में फासी पवंदो आहे ऐं बरसाति जे समय पाणी भरिजनि जी समस्या पैदा थी वेंदी आहे। प्लास्टिक जो सभिनी खां वधीक नुक़सान पशु पक्षियुनि खे थींदो आहे। गांइ, कुता ऐं ॿिया जानवर चङाई भेरा प्लास्टिक जूं थैलियुनि खे खाधो समझी खाई वेंदा आहिनि। हिन कारण सां उहे बीमार थी पवंदा आहिनि ऐं चङाई भेरा उन्हनि जी मौत बि थी वेंदी आहे। पाणीअ में रहण वारा जीव बि प्लास्टिक जे करे प्रभावित थी रहिया आहिनि। प्लास्टिक असांजी धरती लाइ ख़तरो आहे। ही मिटी जी गुणवत्ता खे ख़राब थो करे। जॾहिं मिटी स्वस्थ न रहंदी आहे त पौधनि जे वधण वीझण ते बि असर पवंदो आहे। कुझु माण्हू प्लास्टिक खे साड़े ख़त्मु करण जी कोशिश कंदा आहिनि पर हिन सां समस्या घटि न थींदी आहे बल्कि वधी वेंदी आहे। प्लास्टिक खे साड़ण वक़्तु ज़हरी गैसिस निकिरंदियूं आहिनि जे हवा खे गंदो कंदियूं आहिनि ऐं असांजी सिहत ते बि बुरो असर विझंदियूं आहिनि। हिन करे प्लास्टिक खे साड़ण बि को समाधान कोन्हे। हाणे सवाल ही आहे त असां हिन समस्या सां कीअं था बची सघूं। हिन जो सभिनी खां पहिरियों उपाय आहे त असां प्लास्टिक जो इस्तेमालु घटि कयूं। जॾहिं बाज़ारि वञूं त पाण सां कपिड़े या जूट जी थैली ज़रूरु खणी वञूं। पाणी पीअण लाइ हर दफ़ा नई प्लास्टिक जी बोतल ख़रीद करण जे बदिले पंहिंजी बोतल गॾु रखूं। जेतिरे क़दुरु थी सघे प्लास्टिक जे बदिरां कागज़, कपिड़ो, स्टील या ॿियूं ईको फ्रेंडली शयुनि जो इस्तेमालु कयूं। असांखे ध्यानु रखणु घुरिजे त प्लास्टिक खे

हिते उते न फिटी कयूं। कचरे खे सही जॻह ते विझूं ऐं जेकरे संभव हुजे त प्लास्टिक खे रीसाइक्लिंग लाइ अलॻि रखूं। अॼु असां सभु मिली नंढियूं नंढियूं आदत अपनाए वठूं त पर्यावरण जी रक्षा में असीं वॾो योगदान ॾेई था सघूं।

0: आहिनि जिन ते पाबंदी लगाई वई आहे। सरकार समय समय ते जागरूकता अभियान भी हलाईंदी रहंदी आहे, जंहिं जे ज़रिए माण्हुनि खे प्लास्टिक जे नुकसान ऐं हिन जे बहितर विकल्पन जे बारे में जानकारी ॾिनी वेंदी आहे। हिन खां सवाइ सरकार कचरे जे सही प्रबंधन ऐं रीसाइक्लिंग जी व्यवस्था खे मज़बूत ठाहिण जी कोशिश करे रही आहे, त जीअं इस्तेमाल थियण वारी प्लास्टिक वरी इस्तेमाल में अची सघे। नगर निगम ऐं स्थानीय संस्थान खे बि सफ़ाई ऐं प्लास्टिक जे कचरे जे सही निपटान जी ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे। सरकार कपड़े, जूठ, कागज़ ऐं ॿियूं ईको फ्रेंडली शयुनि खे वाधारो ॾेई रही आहे, त जीअं माण्हू प्लास्टिक जे बदिले इन्हनि जो इस्तेमालु कनि। हिन सभिनी कोशिशुनि जो मक़सदु सिर्फ़ प्लास्टिक जो इस्तेमालु घटाइणु कोन्हे, पर अचण वारियुनि पीढ़ियुनि लाइ हिकु साफ़, स्वस्थ ऐं सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराइण बि आहे। पर सिर्फ़ सरकार जी कोशिशुनि सां ही समस्या ख़त्मु न थींदी, असां सभिनी खे बि पंहिंजी ज़िमेदारी समुझणु खपे। हिकु ज़िमेदार नागरिक जे रूप में असां नंढा नंढा क़दम खणी वॾो बदिलाउ आणे था सघूं। पंहिंजे घर परिवार दोस्तनि ऐं आसे पासे जे माण्हुनि खे बि प्लास्टिक जे नुक़सान जे बारे में जागरूक करणु असांजो फ़र्ज़ आहे। अगरि हर माण्हू रोज़ हिकु प्लास्टिक जी थैली घटि इस्तेमालु करे, त लख ई प्लास्टिक जूं थैलियूं पर्यावरण में वञण खां रोके था सघूं। प्लास्टिक पंहिंजे पाण में समस्या कोन्हे, असल समस्या हिन जो ज़रूरत खां वधीक ऐं लापरवाहीअ सां कयल इस्तेमालु आहे। अॼु ज़रूरत सुविधा ऐं ज़िमेदारी जे विच संतुलन रखण जी आहे। असांखे ही यादि रखणु घुर्जे त धरती सिर्फ़ असांजी कोन्हे, ही अचण वारियुनि पीढ़ियुनि जी बि अमानत आहे। जीअं असांखे साफ़ सुथरो ऐं सुंदर पर्यावरण मिलियो आहे, त असांजी बि ज़िमेदारी इहा ई आहे त धरती सुरक्षित हालत में असीं अचण वारी पीढ़ी खे सौंपियूं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस असांखे ही संदेश थो ॾिए त पर्यावरण जी रक्षा सिर्फ़ हिकु व्यक्ति, हिकु संस्था या सरकार जी ज़िमेदारी कोन्हे, ही असां सभिनी जी ज़िमेदारी ऐं असांजो फ़र्ज़ आहे। पर्यावरण जी रक्षा में कयल हर कोशिश धरतीअ खे बचाइण में मदद कंदी।
1: प्लास्टिक प्रदूषण धरतीअ लाइ वॾो ख़तरो आहे, इन सबबु वार्ता ॿुधी रहिया हुआ श्रीमती अमृता मोटवानी खां। ऐं हिन खां पोइ अचो त ॿुधूं था शल धीअरनि ॼमन फ़िल्म जो ही गीत, कमला केसवाणीअ जी आवाज़ में, सी अर्जुन जो संगीत, गोवर्धन भारतीअ जी रचना।
2: छा पई मोचाए तो आ कैसे अलाए रखो दिल में निकाए अड़ी हाय धक धक धक धक छा पई मोचाए तो आ कैसे अलाए

ऐं हाणे हलंदे हलंदे वरी हिकु मिठड़ो गीत कमला केसवाणीअ जी आवाज़, जेठालाल जो साथ ऐं लाडली फिल्म जो हीउ गीत।

दा पंहिंजी रेडियो साथी हर्षा मूलचंदाणी खे इजाज़त। तव्हां सां गॾु वरी नए कार्यक्रम नई रूपरेखा सां जल्दी मुलाक़ात थींदी। वरी गॾिजबो। सभु जो भलो।

0: अभी आप सुन रहे थे सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण, ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा का, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास के।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अनूपपुर जिले की चिट्ठी, आलेख अजीत मिश्रा, वाचन स्वर शेख महजबी अलमास।

प्राचीन ज्ञान दुर्लभ अभिलेखों और ऐतिहासिक ताड़पत्रों के संरक्षण और उन्हें भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने के उद्देश्य से अनूपपुर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की विशेष टीम ने अब तक जिले में 10,544 प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर उनकी जानकारी आधिकारिक ऐप पर अपलोड कर दी है। सर्वेक्षण टीम द्वारा अमरकंटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में अभियान चला कर इन बहुमूल्य धरोहरों को संकलित किया जा रहा है। अडानी थर्मल पावर प्लांट में जिला चिकित्सालय अनूपपुर एवं श्रीराम अस्पताल शहडोल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 293 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कलेक्टर हर्षल पंचोली एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती अर्चना कुमारी के मार्गदर्शन में जिले में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल ग्रहण संरचनाओं, तालाबों, नदियों एवं बावड़ियों के संरक्षण तथा अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य 26 के विरुद्ध 41 कार्य पूर्ण किए गए। वहीं नालों नालियों की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के 32 लक्ष्यों के मुकाबले 122 कार्य किए गए हैं। जिले में अमृत हरित अभियान के अंतर्गत पौधरोपण की तैयारियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 50 के लक्ष्य के विरुद्ध 169 गतिविधियां पूर्ण की गई। चित्रकला, रंगोली, निबंध, स्लोगन, वॉल पेंटिंग, संगीत कार्यक्रम, कलश यात्रा एवं जागरूकता रैली जैसी गतिविधियों के 25 लक्ष्यों के विरुद्ध 63 कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशा न करने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। छात्र छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कुमार सक्सेना ने कहा कि युवा वर्ग राष्ट्र की शक्ति है और उन्हें नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर अपने व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य संरक्षण एवं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देना चाहिए। महिला एवं बालिका हितैषी पंचायत पहल के अंतर्गत राज्य सलाहकार निशा बारी परनामी ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत कोहका का भ्रमण कर पंचायत की विभिन्न गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं पंचायत द्वारा संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों का अवलोकन किया तथा महिला आमसभा में ग्रामीण महिलाओं की समस्याएं एवं सुझाव सुने। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत की याद में शुक्रवार 26 जून को मुस्लिम समुदाय का मातमी पर्व मुहर्रम सादगी के साथ मनाया गया। लोगों ने आशुरा जुमे की नमाज अदा करते हुए अमन और शांति की दुआएं मांगी। जिले के 6 स्थानों में 21 ताजिए निकाले गए और उन्हें करबला में ठंडा किया गया। 37 दिनों बाद 4 जंगली हाथियों का समूह लौट कर जिले में आ गया है। इससे जंगली क्षेत्रों और उससे लगे हुए ग्रामीण इलाकों में चिंता है। दिन भर ये हाथी जंगल में विश्राम करते हैं और रात के समय रिहायशी इलाकों में जाकर घरों में तोड़फोड़ करते हैं। हालांकि वन अमला हाथियों पर नजर रखे हुए है और विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उनको रात के समय कच्चे मकानों में ना रहने, सुरक्षित स्थानों में जाने और घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई है। ऐसी किसी भी गतिविधियों को करने से मना किया है जिससे हाथी भड़क कर हानि पहुंचा सकता है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के विकास से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विषयों को लेकर केंद्रीय कृषि

एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर पत्र सौंपते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से अनूपपुर जिले में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना का अनुरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित जनजाति बहुल एवं कृषि प्रधान जिले के विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 300 किलोमीटर दूर जबलपुर जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं जनजातीय विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री रौतेल ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवीन आवास स्वीकृत किए जाने की मांग उठाई है। जिले में इस समय बारिश ना के बराबर हो रही है, जिससे कृषि कार्य शुरू करने में देरी हो रही है। बारिश नहीं होने से मौसम में अभी भी गर्मी बनी हुई है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में पुष्पराजगढ़ अमरकंटक से लगे क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिससे पर्यटन और पवित्र नगरी अमरकंटक का मौसम सुहाना हो गया है और वहां के तापमान में कमी आई है, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अनूपपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अनूपपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था अजीत मिश्रा का और वाचन स्वर थे शेख महजबी अलमास के। ये आकाशवाणी भोपाल
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी, आज की इस कड़ी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है।

श्रोताओं वंदे मातरम। भारत माता के प्राकृतिक ऐतिहासिक सौंदर्य की कालजयी स्तुति ही नहीं वरन देशवासियों में असीम ऊर्जा भरने का एक उद्घोष भी है। ये उद्घोष अपनी मातृभूमि की रक्षा करते उन अनेक क्रांतिकारियों, वीर बालाओं और सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने आज़ादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी।

श्रोताओं, वंदे मातरम की आज की इस कड़ी में हम ऐसी ही एक वीरांगना को शत शत नमन करते हैं जिन्होंने अपने गोंडवाना की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे मध्य भारत का एक ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र गोंडवाना के नाम से प्रसिद्ध है और जबलपुर भी उसी में शामिल है। यहाँ कभी गोंड राजाओं का शासन था। गोंडवाना साम्राज्य की महान वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान के लिए हम नतमस्तक हैं। उन्होंने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ लड़ते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। नर्मदा जबलपुर मंडला रोड नर्रई नाला स्थित समाधि स्थल आज भी उनके बलिदान की याद दिलाता है। 24 जून रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के रूप में इतिहास में अमिट है।

वंदे मातरम का उद्घोष ऐसे ही अमर बलिदानियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करता है। आइए हम सब हर क्षण अपनी भारत भूमि को प्रणाम करें। वंदे मातरम।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विश्व दर्पण अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लेनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस प्लेनरी ने दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध पर जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
3: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्रालय ने मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसार हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो

0: कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: इस हमले से दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जापान में आज सुबह 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से दूर लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तत्काल कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि तूफान के दौरान आए भूकंपों की श्रृंखला से भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चेन्नई बंदरगाह से भारत आ रहे अवैध पटाखों की तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम किया है। ये पटाखे चीन में बनाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकारियों ने चीन से आ रहे दो कंटेनरों को जब्त किया जिनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर लदे होने की सूचना दी गई थी, लेकिन जाँच में पाया गया कि कंटेनरों में लगभग 46,000 पटाखे छिपाए गए थे। एक अन्य मामले में चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने चीन के पटाखों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडार, वाणिज्य विभाग तथा डूपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: महोत्सव में भारतीय आमों का स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। इनमें से कई ने अमेरिका में प्रीमियम भारतीय किस्मों की व्यापक उपलब्धता की मांग की। भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्र ने कहा कि इस वार्षिक महोत्सव का पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आकर्षण बढ़ा है। भारत विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकुमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के रौनक चौहान और महिला सिंगल सेमीफाइनल में देविका सिहाग हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष T20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होना है। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सारायेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोका के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे नंबर पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे।

0: वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10:20 हुए हैं। श्रोताओं, हम हाजिर हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सारंगा के साथ। आप सभी को अस्मिता का नमस्कार। कार्यक्रम के पहले गीत में फरमाइश करता हमारे आप सभी श्रोता चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लकी विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी और रौनक सेन, यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र और सत्येंद्र जैन, पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, कुमारी सोनाली, मालती, मयंक, अनिमेश और मास्टर अंसल नागदेव। आप सभी ने लिख भेजा है आनंद फिल्म के इस गीत के लिए। शब्द रचना गुलजार की है, तर्ज बनाई है सलिल चौधरी ने और स्वर लता मंगेशकर का।

सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और श्रीमती शीतल राजेश, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक, मीका विरक, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से विशाल कुमार धंजे, राहुल कुमार, राजेश कुमार, शीला और गायत्री धंजे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, खुर्दी रोड मानपुर से महिमा वैद्य, नीतू रानी और विजय वैद्य। आप सभी ने लिख भेजा है प्रेम गीत फिल्म के इस गीत के लिए, जिसमें स्वर आशा भोसले और साथियों का है, शब्दकार इंदिवर, संगीतकार जगजीत सिंह।

आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सारंगा। लीजिए अब सुनिए आक्रमण फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत के लिए हमें पत्र भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गदरे, सुभाष दिगंबर, राजेश, शुभांगी एवं सृष्टि गदरे, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वा सेरे, बेमेतरा से छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत, वीरेंद्र और ब्रिजकांत सारथी। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया आक्रमण फिल्म का ये नगमा।

0: सारंगा कार्यक्रम के अगले गीत में पसंद आप सभी श्रोताओं की। नर्मदा कॉलोनी मंडला मध्य प्रदेश से डॉक्टर सिया शरण ज्योतिषी, पुष्पा ज्योतिषी, गोल्डी रोली लकी, श्वेता और परु ज्योतिषी, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरत, हल्ले लल्लू और ऋषि रैकवार, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित कुमारी ध्वनि परी। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार का गाया दाग फिल्म का ये गीत, शब्दकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: आज क्या है

सारंगा कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में नसीब फिल्म का ये गीत, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन टुकटुक गवाणकर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से अमित कुमार राय, हैप्पी श्रीमती उषा और ओम प्रकाश राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय, नेपाल पैलेस सागर मध्य प्रदेश से मोनिका राणा, ऋषिका नूपुर, रॉबिन तिलक और मीना राणा। तो लीजिए आप सभी की फरमाइश पर नसीब फिल्म का ये नगमा।

से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले, बिलहरी बड़खेरा कटनी से संतोष ठाकुर, रामाधार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, सुजीत बर्मन, अफजल खान और ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, संजय पुरी और इनके बहुत सारे साथी, मगरलोड छत्तीसगढ़ से पुनू राम साहू राज, तेजेश्वरी साहू, राजश्री और राजवीर। आप सभी सुनना चाहते हैं हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में अखियों के झरोखों से फिल्म का ये नगमा, गीतकार और संगीतकार रवींद्र जैन।

सारंगा कार्यक्रम के आखिर में फरमाइश करता आप सभी श्रोता, कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी प्रमोद सृष्टि राही, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, आप सभी ने लिख भेजा है किशोर कुमार के गाए इस गीत के लिए। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम महबूब की मेहंदी।

ही आज का सारंगा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। सुबह 11 बजे से आप सुनेंगे मन की बात।

0: बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: महात्मा गांधी का कहना है,
2: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया फीडबैक चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया ना किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात, आकाशवाणी के माध्यम से

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते। इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे। जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी

इस लीक का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद

भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, स्त्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में
जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए। अपने विचार और अपने सुझाव
भेजते रहिए।

अनजान की बोलों को अभी आपने सुना, आवाज़ थी किशोर कुमार की। राजेश रोशन ने इस गीत की धुन बनाई थी और फिल्म का नाम था याराना। और आपकी फरमाइश में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और

कहानियाँ। अगली चिट्ठी आई है मनमोहन राजावत, जिन्होंने ये खत लिख भेजा है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से। साथ में है मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनका पूरा परिवार। ये गीत सुनना चाह रहे हैं बेटी फिल्म का। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। शकील बदायूनी ने इस गीत को शब्द दिए हैं और धुन है सोनिक ओमी की।

और अब अगला नगमा आ रहा है हमारे इन दोस्तों की फरमाइश पर, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा, इन्होंने ये ख़त लिख भेजा है भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन, इन दोस्तों ने सुनना चाहा है रफ़ी साहब को। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन बनाई है, हसरत जयपुरी ने शब्द दिए हैं, आवाज़ है रफ़ी साहब की, जो हमने आपको बता ही दिया है। फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।

और अब अगला गीत आ रहा है हमारे इन सभी दोस्तों की पसंद का, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी वर्मा और प्रभाकर जोंगले, आरती जोंगले, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है गौतम नगर ज़िला नांदेड़ से। इन दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार का गाया हुआ वो गीत जिसे शब्द दिए हैं आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई है और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

रामचंद माखीजा काफिर भाई सविता बेबी स्वाति माही पूजा छुटकी शरद कुमार एवं पूरा माखीजा कुटुंब इस गीत को सुनना चाहता है चाहते हैं जो गीत हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। दौलतबाग मुरादाबाद से ज़फ़र हुसैन नईमा बेगम कासिम अली और नदीम अली ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शुएब खान और औरंगाबाद से ये चिट्ठी आई है राजेश साबले पाटिल शीतल राजेश राजदीप और साक्षी राजेश की। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं रफ़ी साहब का गाया हुआ वो गीत जिसकी धुन बनाई है मदन मोहन ने। राजा मेहंदी अली ख़ान ने इस गीत को शब्द दिए हैं दुल्हन एक रात की। इस फिल्म का ये गीत है और हम आपको ये बता ही चुके हैं कि इस गीत को आवाज़ दी है रफ़ी साहब ने। आइए सुनते हैं।

और इस गीत को सुनवाने के लिए कुछ और चिट्ठियाँ आई थी जिनमें शामिल हैं बत्ता परिवार लिखने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू और निहारिका, साथ में है वंश बत्ता, प्रवीण शिमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज शिमाली ने ये चिट्ठी लिख भेजी थी कंवर कॉलोनी बड़वाह से। और इन्हीं दोस्तों की इस फरमाइश के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न हुआ। आप सभी को शिवम का नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दोपहर के 12:25 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 12:30 होने को हैं। ये समय है कार्यक्रम संग्रहालय से का। इसमें आप इन दिनों सुन रहे हैं श्रृंखला भुवन मोहिनी। आज इसकी 10वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं।

0: अब तक धारावाहिक भुवन मोहिनी में आपने सुना निर्वासित नर्तकी भुवन मोहिनी को खोजते हुए राजकुमार विजय श्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां राजा आदित्य सेन के यहां भुवन मोहिनी ने आश्रय लिया था। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे, परंतु चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षण के बावजूद विजय श्रवा के मन में भुवन मोहिनी ही बसी थी। ये सब जानकर भी चंद्रहासिनी विवाह करने को तैयार थी। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। भुवन मोहिनी सुंदरता की देवी तो थी ही, अब वो राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक भी बन गई। हूणों के साथ युद्ध में भुवन मोहिनी छाया की तरह विजय श्रवा के साथ रही और विजय हासिल हुई। भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। इन दोनों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं देकर भुवन मोहिनी दूर चली गई। 5 वर्ष बाद जब वो आई तो चंद्रहासिनी ने अपने कटु शब्दों से उसका अपमान किया। दंड स्वरूप विजय श्रवा ने उसे महल छोड़ने का आदेश दे दिया। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 10वीं कड़ी में।
1: मैं इस अंतःपुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतःपुर का परित्याग कर दे।

0: बेटी, मेरा एकमात्र पुत्र ही आज भारत का सम्राट है। जब उसके पिता ने भुवन मोहिनी को निर्वासित किया था और मैंने भी पुत्र को अपमानित किया था, तब उसने राज सिंहासन और राजैश्वर्य का मोह छोड़कर भुवन मोहिनी के लिए सबसे नाता तोड़ लिया था। दूसरे भुवन मोहिनी ने स्वयं तुम्हारे लिए जो किया वो अन्य किसी स्त्री से आशा नहीं की जा सकती थी। अंत में स्वयं सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया था। आगे चलकर उसी भुवन मोहिनी ने अपने को नर्तकी के स्थान पर वीरांगना सिद्ध कर दिखाया। वो सहस्त्रों लक्षों भारतीय महिलाओं के सतीत्व को अक्षुण्य रखने के यश की भागिनी बन चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि उसने स्वयं तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का मार्ग खोल दिया था। बेटी, तुमसे अपराध हुआ है, किंतु चलो, मैं सम्राट से तुम्हारे अपराधों की क्षमा याचना करूंगी। चलो। भारत के सम्राट,
1: राजमाता,
0: आज तुम्हारी माता भी तुम्हारे

0: सम्राट पद की महत्ता के समक्ष नतमस्तक। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी वृद्धा माता पुत्रवधु के होते हुए कष्ट झेले?
1: नहीं माँ, क्या मैंने कोई कष्ट दिया आपको?
0: नहीं मेरे पुत्र।
1: तो फिर
0: क्या कहूं, तुमने पुत्र वधु को निर्वासित किया है, मेरी गोद से मेरा पौत्र छीनना चाहा है, जो इस राज सिंहासन का श्रृंगार है। जानते हो, चंद्रहासिनी सर्वथा मेरी सेवा में तत्पर रही है। अपने पौत्र का मुख चुंबन करके मैंने वृद्धावस्था के कष्टों को भुलाने की चेष्टा की है। आज सम्राट का आदेश मेरी गोद से मेरा पौत्र और मेरी दृष्टि से प्रेम की मूर्ति पुत्रवधु को छीन रहा है। विडंबना है कि वो आदेश देने वाला सम्राट मेरा ही हृदय पिंड है। मैं अब जीना नहीं चाहती। तुम्हारे पिता को भी इस प्रकार पौत्र और पुत्रवधु के वियोग के कारण अपार कष्ट झेलना पड़ेगा। मेरे लाल, मेरी आज्ञा है कि हम दोनों बूढ़ों के जीवन काल तक ना तो हमारी पुत्रवधु हमारी दृष्टि से बाहर होगी और ना ही मेरा फूल सा कोमल पौत्र ही हमारी गोद से छीना जाएगा।
1: अच्छा, ऐसा ही होगा माँ, किंतु मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।
0: क्या?
1: राजकुमारी चंद्रहासिनी मेरी दृष्टि के सम्मुख नहीं आएंगी।
0: क्या?
1: अब वो मेरे स्थान पर सत्ता और शक्ति की पुजारिणी बन चुकी हैं।
0: मेरी लाल, तुम मेरी दृष्टि के बाहर भारत के सम्राट हो, किंतु मेरे अपने घर में मेरे एकमात्र पुत्र, मेरे जीवन के एकमात्र सहारे हो। मैं तुम्हें से पूछती हूं कि चंद्रहासिनी क्या मुख लेकर महाराजा आदित्य सेन के पास जाएगी? उसकी वहां पर आवश्यकता ही क्या है? उसके सर्वस्व तो तुम ही बन चुके हो मेरे पुत्र। लाख अपराध करने पर भी वो भारत सम्राट की साम्राज्ञी घोषित हो चुकी है। वो मृत्यु के पश्चात ही साम्राज्ञी पद से अपदस्थ होगी। पुत्र, तुमने एक दिन अग्नि, सूर्य, चंद्र और माता पिता तुल्य गुरुजनों के समक्ष अपनी प्रियतमा जीवन संगनी के रूप में चंद्रहासिनी को स्वीकार किया था, उसके बड़े बड़े अपराध क्षमा करने का वचन दान भी दिया था। आज उसके अधिकारों के संरक्षण की मैं दुहाई देती हूं मेरे पुत्र। मेरे हृदय के टुकड़े इस कोमल फूल सी नारी को अपने क्रोधाग्नि में झुलसने से बचा लो, बचा लो पुत्र, बचा लो।
2: नाथ, मेरे अपराध क्षमा हो। मैंने भुवन मुनि के द्वेष के कारण आपको भी अपमानित किया है। मुझे क्षमा करिए स्वामी, मुझे क्षमा करिए।
1: राजकुमारी, मेरे पाँव में गिरना तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरा परित्याग करो और जाओ सत्ता और शक्ति की पूजा करो। तुम पर स्वयं राजमाता प्रसन्न है, ऐसी अवस्था में मेरे आदेशों का क्या मूल्य है? माता की आज्ञा और आग्रह पर मैं अपने आदेशों को वापस लेता हूं। किंतु ध्यान रहे, अब हमारा तुम्हारा पार्थिव संबंध छिन्न भिन्न हो चुका है। मां, मैं एकांत चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपने सूने राजमहल में एक रात और विश्राम कर लूं। यदि चंद्रहासिनी का रहना यहां अनिवार्य है तो मैं ही चला जाऊंगा। यह राज सिंहासन भी मेरा नहीं रहा अब, इस पर चंद्रहासिनी के पुत्र का अधिकार है। मैं सर्वस्व उस उत्तराधिकारी के लिए चंद्रहासिनी के संरक्षण में छोड़कर जाऊंगा। आज से मैं सम्राट नहीं, केवल चंद्रहासिनी साम्राज्ञी हैं। मैं राज सिंहासन के प्रति अपना कर्तव्य केवल उदासीन भाव से तब तक करता रहूंगा जब तक कि चंद्रहासिनी का पुत्र योग्य नहीं बन जाता। इसके पश्चात मेरा जीवन। उचित नहीं कि भारत की साम्राज्ञी मुझ जैसे तुच्छ मनुष्य के चरणों में निरीह अबला की भांति पड़ी रहे। शक्ति और सत्ता की उपासिका अपना साम्राज्य संभालें।
0: ये तो और भी बुरा हुआ। हे प्रभु, मेरे पुत्र के ऐसे संकल्पों को शिथिल कर दो नाथ। मैं अपनी वृद्धावस्था दुखिया पुत्र वधु को देखते हुए नहीं बिताना चाहती। उठो पुत्री, ना चाहते हुए भी अब मुझे भुवन मोहिनी की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जो कार्य मैं नहीं कर सकी वो अवश्य कर लेगी।
2: एक राजकन्या और अपूर्व सुंदरी होकर भी मैं अपने पति पर उतना प्रभाव क्यों नहीं डाल सकी जितना इस भुवन मोहिनी ने डाल रखा है।

0: हे प्रभु, मुझसे ऐसा कोई काम मत कराना जिससे साम्राज्य का भविष्य धूमिल होता दिखाई पड़े। मैं क्या करूं कि सम्राट विजयश्रवा का हृदय भी शांत रहे और चंद्रहासिनी भी संतुष्ट रहे। देखती हूं कि राजमाता ने मुझे क्यों बुलाया है। कहीं सम्राट ने कोई अनिच्छित घटना तो नहीं घटा दी।
1: अब तुम ही बोलो भुवन मोहिनी, मैं बड़े असमंजस में पड़ गई हूं। यदि राजकुमार को मैं सम्राट के रूप में न मानूं, तो भी समस्या का समाधान नहीं होता। वो सम्राट पद पर आसीन नहीं रहना चाहता। उसने समस्त शक्ति और सत्ता स्वेच्छा से त्याग कर राजप्रासाद से बाहर रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। किंतु मैं सोचती हूं कि चंद्रहासिनी सत्ता और शक्ति को लेकर करेगी क्या? जिसकी प्रियता प्राप्त किए रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी का चरण चुंबन करती, वो तो उससे पूर्णतः रुष्ट है। उसका आदेश है कि चंद्रहासिनी उसकी दृष्टि के सामने ना आए। पति के रूठे रहने पर सत्ता और शक्ति चंद्रहासिनी के जीवन को सुखी नहीं बना सकेंगी। ये तो वास्तव में चंद्रहासिनी का सौभाग्य था कि तुम्हारी कृपा के द्वारा वो राजकुमार की जीवन संगनी बनने का अधिकार प्राप्त कर सकी। किंतु चंद्रहासिनी यह अनुमान नहीं लगा सकी थी कि मेरे इकलौते राजकुमार के जीवन पर तुम्हारा कैसा प्रभाव है।
0: मैं निवेदन करती हूँ कि राजमाता अपने पवित्र मुख से मुझ नर्तकी के प्रभाव का यशोगान न करें। मैं सेवा में प्रस्तुत हूँ। मुझे आदेश प्राप्त होना चाहिए कि मुझे करना क्या होगा।
1: करना क्या होगा, यही तो विकट पहेली है जिसे मुझे नहीं तुम्हें सुलझाना होगा। जन्म जन्मांतरों के न जाने किन संचित पुण्यों ने सम्राट के हृदय सिंहासन पर तुम्हें प्रतिष्ठित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि इस कठिन समस्या को तुम्हें सुलझा सकती हो। देखो देखो इस बेचारी को, क्या यही दिन दिखाने के लिए महाराज आदित्य सेन ने मेरे बेटे के साथ इसका विवाह किया था?
2: मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण घड़ी को क्या कहूं। वास्तव में मैंने तुम्हारे प्रति जिस अकृतज्ञता पूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन किया है, उसी ने सम्राट को रुष्ट कर दिया है। मैं क्या कर सकती हूँ। यदि एक बार मुझ पर और दया करो तो मैं आज जन्म ऐसी भूल नहीं करूंगी।
0: साम्राज्ञी, सम्राट की निर्णयों को पलटने या परिवर्तन कराने की क्षमता मुझ में नहीं है। फिर भी आपकी ये दशा मैं नहीं देख सकती। राजमाता, मैं उनकी सेवा में उपस्थित होने जा रही हूँ। नहीं जानती कि मेरी उपस्थिति से रुष्ट होंगे या प्रसन्न, किंतु एकाध घड़ी पश्चात साम्राज्ञी वहां अवश्य पधारें।
2: मैं?
0: हाँ।
2: नहीं, मुझे उनकी दृष्टि के सम्मुख आने का आदेश नहीं है। वो संभवतः आज एकांत वास करेंगे और राजप्रासाद से कहीं दूर रहेंगे, मेरे ही कारण।
0: कुछ भी हो साम्राज्ञी, वहां पर आप अवश्य आएं।
2: लेकिन
1: ठीक ही तो है भुवन मोहिनी, मेरे रूठे राजकुमार को मना लेने की क्षमता रखती है पुत्री।
2: जो आज्ञा राजमाता।
0: देव, अपराध क्षमा हो। मैं ये जानते हुए भी कि अभी देव इस स्थल में एकाकी रहना चाहते थे, दुस्साहस पूर्वक चली आई हूं।
3: आओ भुवन मोहिनी, तुम्हें मेरे समीप आने में किसी क्षण कोई विचार नहीं लाना चाहिए। विजयश्रवा का एकांत जीवन तुम्हारी एकांत चिंतना का ही मंदिर है। तुम्हें मेरे समीप आने में किसी बाधा का अनुभव नहीं करना चाहिए।
0: नाथ, मैं एक तुच्छ नारी हूं, भारत सम्राट की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। फिर भी आज की बातें मुझे अधिक पीड़ित कर रही हैं।
3: क्यों?
0: इसलिए कि मैं ही वास्तव में चंद्रहासिनी के नारीत्व के अधिकार का अपहरण करती पाई गई हूं। यदि साम्राज्ञी को मुझ पर असाधारण क्रोध उत्पन्न भी हुआ था, तब भी देव को मेरा पक्ष लेकर उन्हें दंडित करना उचित नहीं था। संपूर्ण अपराधों की पृष्ठभूमि तो मैं ही हूं।
3: नहीं, विजयश्रवा तुम्हें अपमानित होते नहीं देख सकता। जब मेरे जीवन में चंद्रहासिनी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब भी तुम्हारी प्रतिमा मेरे अंतःस्थल में प्रतिष्ठित थी। मैंने चंद्रहासिनी को छुपाकर तुमसे प्रेम नहीं किया। मैंने वैवाहिक संबंधों पर होने वाली चर्चा के समय ही सारी परिस्थिति स्पष्ट कर दी थी। चंद्रहासिनी स्वयं जब अपने पितृगृह में थी, तभी उन्हें सभी बातें ज्ञात हो चुकी थीं। फिर भी आज साम्राज्ञी ने जो व्यवहार किया, उसका किसी न किसी रूप में दंड तो भोगना ही पड़ेगा।
0: यदि एक बार पुनः सम्राट मेरी स्थिति पर विचार कर साम्राज्ञी को क्षमा कर दे, तो मैं कलंक भाजन बनने से बच जाऊंगी। अन्यथा मुझे विचार करना पड़ेगा कि मेरे जीवित रहने की आवश्यकता है भी या नहीं।
3: ये क्या बात हुई? चंद्रहासिनी को पश्चाताप होना चाहिए, न कि तुम्हें। आओ प्रिय, ये बातें यहीं छोड़ें। अब अपने और मेरे बीच चंद्रहासिनी का प्रश्न ना खड़ा करो। मैं एक बार तुम्हारे प्रेम मंदिर में आत्मविस्मृत होकर जीवन को पुरस्कृत करना चाहता हूं। जीवन के प्रत्येक बहुमूल्य क्षण केवल आत्मदाह की नारकीय यंत्रणा में छटपटाने के लिए नहीं व्यतीत हो रहे हैं।
0: आह स्वामी, सचमुच में आपके जीवन में एक छलना मात्र सिद्ध हो रही हूं। आज कितने वर्षों से मेरे प्रियतम आह्वान करते आए हैं कि वो मिलन की एक पुलक भरी घड़ी बिता लें, किंतु न जाने मैं आज तक क्यों प्रियतम के मिलन से भय खाती रही। जिनके चरणों में कभी समर्पित हो चुकी थी।
3: क्या सोचने लगी?
0: मेरी प्रियतम सम्राट, न जाने विधि विधान के किन कुअंकों में जन्म जन्मांतर का अभिशाप छिपा था कि मैं आग के दहकते हुए गोले की भांति अपना हृदय पिंड भस्म करती रही। फिर भी संभवतः अभी वो दिन कुछ दूर है जब जलन का अंतिम क्षण समाप्त होकर चिर शांति प्रदान करेगा।
3: ये चिर शांति तुम्हारे लिए व्यंग सिद्ध होगी भुवन मोहिनी। मैं कटुभाषी भले हूं, किंतु असत्य नहीं कह रहा।
0: जानती हूं सम्राट, किंतु चंद्रहासिनी की आकांक्षाओं के नंदन कानन में आग की लपटें क्यों जलाऊं?
3: जैसे चंद्रहासिनी ने तुम्हारा संसार नष्ट किया, चाहो तो तुम भी वही कर सकती हो।

0: और उनकी सेवाओं को ग्रहण कर उनके नारित्व को सफल और धन्य हो लेने दे।
1: यही तो कांटा है भुवन मोहिनी, क्या मेरी बातों को साधारण मनुष्यों की भांति नहीं समझ सकती? क्या मुझे ये अधिकार नहीं कि जो मेरा तिरस्कार करे उसका तिरस्कार मैं भी कर सकूं?
0: नहीं सम्राट, जैसे को तैसा व्यवहार करना महान पुरुषों के लक्षण नहीं। जो बड़े हैं, पूज्य हैं, वे सर्वदा क्षमादान द्वारा अपनी आत्मा का महान उपकार करते हैं, किंतु जो छोटे हैं वो अपराध करने की प्रवृत्ति से बाध्य रहते हैं। मेरे सम्राट, मैं आपके चरणों में गिरकर निवेदन करती हूँ कि एक बार मेरे निवेदन के प्रति सदैव बनकर साम्राज्ञी को अवश्य क्षमा करें।
1: उठो भुवन मोहिनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम निरापराध हो, मेरे चरणों में गिरकर मुझे ही अपराधी बना रही हो। तुम्हें अब चंद्रहासिनी से क्या प्रयोजन है? अभी आज के व्यवहार को क्या तुम भूल गई?
0: नहीं मेरे सम्राट, भूली नहीं हूं, किंतु अप्रसन्न भी नहीं हूं। मैं उसी व्यवहार की योग्य थी, आज तो मैं कभी भी चंद्रहासिनी पर रुष्ट ना होऊंगी।
2: सम्राट।
1: ओ आइए साम्राज्ञी, देखिए इसे देखिए, जिसे पग पग पर आप ठुकराती रही हैं वही आपके पक्ष में मुझसे निवेदन किए जा रही है। भुवन मोहिनी उठो, विजय श्रवा तुम्हारे आंसुओं को देखने का अभ्यस्त नहीं है। जाओ, मैंने सारी बातें मान ली, किंतु ध्यान रहे साम्राज्ञी अब अधिक कष्ट न उठाएं, आनंद पूर्वक अपने राज प्रासाद में ही रहें।
2: और सम्राट?
1: अब मैं सम्राट नहीं हूं साम्राज्ञी, मुझे सम्राट कहके उस महान पद को अपमानित न करें।
2: क्या मुझसे इतना भयानक अपराध बन पड़ा है जो क्षमा नहीं किया जा सकता? क्या मैं उन दिनों की स्नेह को भूल सकती हूँ जब मुझे सम्राट के नेत्रों की पुतली होने का गर्व हुआ करता था? क्या मुझे दर्शन देना भी पाप होगा? सम्राट, मेरे लिए सारे सुख त्याग कर मुझे क्यों नर्क कामनी बना रहे हैं? मैं आपके युगल चरणों की सेवा पर त्याग करने के पश्चात सत्ता और शक्ति द्वारा अपने को सजाकर क्या पाऊंगी मेरे सर्वस्व?
1: अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, परंतु याद रहे तुम्हारे कारण नहीं अपितु इन देवी के आंसुओं के कारण।
2: तुम भी मुझे क्षमा कर दो बहन, अब मुझसे ऐसा अपराध नहीं होगा।
0: साम्राज्ञी, आप सर्वदा मेरे अपराधों को क्षमा करती रहीं, मुझसे क्षमा याचना करना ही अपराध है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ सम्राट। बहन चंद्रहासिनी के इन कोमल हाथों को थामिए, इनका कभी परित्याग मत करिएगा। देव, अब मैं शांतिपूर्वक अपने काम में पुनः लग सकती हूँ ना? विदा सम्राट, विदा साम्राज्ञी, विदा। भुवन मोहिनी, तेरा जीवन तो उस कटी पतंग की तरह हो चुका है जो नियति के झोंकों को झेलती हुई इधर उधर लहराती रहती है। सम्राट को क्या मालूम कि मैं मात्र उनके और चंद्रहासिनी के मध्य आने से बचने के लिए भ्रमण तीर्थाटन आदि कार्यों में अनवरत संलग्न रहती हूँ। निराधार, निरुद्देश्य, 5 वर्ष बीत गए। इन 5 वर्षों के भीतर सम्राट मुझे अब विस्मरित कर चुके होंगे। चंद्रहासिनी अपने पति को अपने वश में कर चुकी होंगी। यदि ऐसा हो चुका होगा तो मैं

निश्चिंत हो जाऊंगी और स्थिर होकर धारा नगरी में ही अनासक्त भाव से रहने का प्रयास करूंगी। अब मैं थक चुकी हूं इस भटकन से, मुझे विश्राम चाहिए, विश्राम।

0: संग्रहालय से। इसके अंतर्गत अभी आपने भुवन मोहिनी की 10वीं कड़ी का प्रसारण सुना। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 होने को हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े हैं। इस तरह से सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने तेल की बचत करने और कार पूल करने की उनकी अपील को पुरजोर समर्थन दिया है। जो लोग एक ही दिशा में अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ साथ जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं। सेशल्स की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हारमनी के साथ सेशल्स के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान का दौरा किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी SCRB द्वारा IECJS विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया और गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है। वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:01 हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। पेड़ लगाएंगे हम तभी बचेंगे हम। बहनों, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण संदेश है। विशेष रूप से वन महोत्सव सप्ताह जो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कराता है। बहनों, पेड़ प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वायु को शुद्ध बनाते हैं। वे वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। बहनों, आज दुनिया सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रही है, वह है पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और वनों की अंधाधुंध कटाई ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, भीषण गर्मी और अनेक प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरियाली देखने को भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम केवल पेड़ों के महत्व को समझे ही नहीं बल्कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करें। बहनों, वन महोत्सव सप्ताह का उद्देश्य लोगों में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस सप्ताह के दौरान देश भर में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी नियमित देखभाल करना, उन्हें पानी देना, सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें बड़ा होने तक संरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जन्मदिन, राष्ट्रीय पर्वों, पारिवारिक उत्सवों तथा अन्य विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष केवल एक भी पेड़ लगाता है और उसकी देखभाल करे तो हमारा देश पुनः हरा भरा बन सकता है। महापुरुषों ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। यह कथन वृक्षों के महत्व को स्पष्ट करता है। पेड़ केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाते हैं। वे मानव जीवन के सच्चे मित्र हैं, इसलिए हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। आइए वन महोत्सव सप्ताह के इस पावन अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और लगाए गए पौधों की देखभाल करेंगे, वनों की कटाई का विरोध करेंगे, पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। हर आंगन में पेड़ लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। पेड़ बचेंगे, वन बचेंगे, तभी सुरक्षित हम रहेंगे। पेड़ लगाएंगे हम, तभी बचेंगे हम।

0: आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर, इनका सम्मान करें के विषय में। बहनों, यह विषय केवल एक कथन नहीं बल्कि मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टरों के प्रति हमारी गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। बहनों, हर वर्ष 1 जुलाई को भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। यह दिन उन सभी चिकित्सकों को समर्पित है जो दिन रात मानव जीवन की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, करुणा और समर्पण का दूसरा नाम है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दर्द या संकट से घिर जाता है तब उसके परिवार की सबसे बड़ी आशा एक डॉक्टर ही होता है। जिस प्रकार ईश्वर हमें जीवन देता है उसी प्रकार डॉक्टर उस जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर ईश्वर का दूसरा नाम डॉक्टर है। एक डॉक्टर वर्षों तक कठिन अध्ययन, प्रशिक्षण और अथक परिश्रम करता है। वह अपनी व्यक्तिगत खुशियों और आराम को पीछे छोड़कर मरीजों की सेवा में लगा रहता है, चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, त्योहार हो या अवकाश। डॉक्टर सदैव अपने कर्तव्य के लिए तत्पर रहते हैं। हमने यह समर्पण विशेष रूप से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा। जब पूरी दुनिया भय और अनिश्चितता से जूझ रही थी तब डॉक्टर ने अपनी जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की सेवा की। अनेक डॉक्टर स्वयं संक्रमित हुए, कई ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, लेकिन उन्होंने मानवता की रक्षा का संकल्प नहीं छोड़ा। उनका यह योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। बहनों, डॉक्टर केवल दवाइयां ही नहीं देते बल्कि मरीज को आशा, आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। उनकी एक मुस्कान, उनका एक सकारात्मक शब्द और उनका संवेदनशील व्यवहार मरीज के मनोबल को बढ़ा देता है। यही कारण है कि समाज में डॉक्टरों का स्थान अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वे भी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनके प्रति विश्वास रखें और उनके कार्यों की सराहना करें। किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सा कर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। बहनों, डॉक्टर्स डे हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम उन सभी डॉक्टरों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से अनगिनत जीवनों को बचाया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ समाज के निर्माण में डॉक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो दर्द को समझे, जो जीवन को बचाए, जो हर संकट में उम्मीद बनाए, वही सच्चा मानवता का रखवाला है। धरती पर डॉक्टर ही ईश्वर का दूसरा नाम कहलाता है। बहनों, जब बात डॉक्टर्स की चल ही रही है तो हम महिलाओं की कई सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम केवल एक महिला से ही साझा कर सकते हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको भेंट वार्ता जिसका विषय है महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिखा जैन, जिनसे भेंट कर रही हैं श्रीमती प्रतिज्ञा देवेंद्र स्वामी।
1: बहनों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा आपको विभिन्न विषयों पर जानकारी देते ही रहते हैं और देखिए आज हमारा जो विषय है वो हम बहनों के लिए

0: ये बहुत ही खास है और वो है महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। और हम सब महिलाएं हैं, हम सब बहनें हैं, और जो महिला डॉक्टर आज हमारे साथ है उनका परिचय आपसे करा दूं। आप हैं डॉक्टर शिखा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ विभाग अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हैं SRVS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी से। तो डॉक्टर शिखा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको।
1: थैंक यू प्रतिज्ञा जी मुझे इन्वाइट करने के लिए।
0: बहुत सारी बातें हमने सोच रखा है आज हम बहनों की तरफ से आपसे करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न तो यही है, बहनों का सबसे प्रिय विषय होता है अपनी सुंदरता। ऐसा क्या करें हमारी बहनें, खासकर जो उनकी सुंदरता में और निखार आए और वो दिन ब दिन बड़े बनी रहे।
1: जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जो बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली क्या है, हमने ये सुना होगा कि अच्छी सुंदरता के लिए अच्छा दिमाग होना बहुत जरूरी है। जब हम दिमाग से स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपनी टेंशन जो है वो एक तरफ रखेंगे, अच्छी हेल्दी लाइफ रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पे निखार आएगा। तो उसके लिए हमें हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज है, वो होता है वाटर इंटेक। हमें पर डे एटलीस्ट 2-3 लीटर्स पर डे पानी का इंटेक रखना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर अच्छा हम पानी का क्वांटिटी अच्छा रखते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं वो हमारी किडनी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा पानी इंटेक अच्छा होगा, स्वेटिंग अच्छी होगी, तो उसके थ्रू भी जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर आएंगे। तो पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, माइंड अच्छा होना चाहिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना। अगर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, उससे भी हमारी स्किन पे अच्छा ग्लो आता है। आजकल मोबाइल के टाइम में लोग, फीमेल्स को भी आजकल मोबाइल का बहुत हैबिट हो गया है कि रात में मोबाइल से लेट सो रहे हैं, इससे उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। फिर वो पिंपल्स के लिए स्किन ट्रीटमेंट लेना है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहीं मोबाइल से देख लिया वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से और हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है, पर डे 10 मिनट या 15 मिनट हमको अपनी बॉडी को एक्सरसाइज पे भी देना है, योगा पे देना है। इन सब चीजों से अगर हम करते हैं तो हमारी स्किन पे काफी चेंजेस आते हैं।
0: बहुत ही आपने इतनी अच्छी तरह बहनों को सभी कुछ बता दिया, हमारी बहनों को जरूर अच्छा लगा होगा ये। अब हम ये जानना चाहेंगे शिखा जी, मैं चाहती हूँ हम जो आज बातचीत कर रहे हैं हमारी हर एज ग्रुप की जो बहनें हैं वो सुन रही हैं, तो सभी को लाभ हो, सभी की जो भी समस्याएं हैं वो उसके बारे में उनका निदान हो जाए। हम बात करेंगे एज ग्रुप के बारे में, जो हमारी महिलाएं हैं जो शादी अभी नहीं हुई है और उनकी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो कई बार मन में उनके कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं चीजों को लेके। तो आप इस तरह की सिचुएशन में किस तरह की मानसिकता उन लोगों की होती है?
1: देखिए, जब लड़की की शादी होने वाली होती है, वो जो स्टेज होती है, वो जो फेज आती है, वो होती है हमारी एडोलेसेंट एज ग्रुप। इस ग्रुप में क्या होता है, लड़कियों की शादियां होनी है, हार्मोन्स भी काफी चेंजेस हो रखे होते हैं, तो जिस वजह से स्ट्रेस होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, इररेगुलर साइकिल्स आने लगती हैं। तो आपके पीरियड्स अगर इररेगुलर हैं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अदरवाइज अगर हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, उसमें अगर अप टू 7 डेज का वेरिएशन है, तो उसको हम बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वो हम वैसे ही नॉर्मल मेडिटेशन से, इन सब चीजों से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आपकी शादी जैसे प्लान होने वाली है तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे HIV है, थैलेसीमिया है, ये कुछ ब्लड टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट है जिनको आपको अपना शादी करने से पहले कराना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता होगा आपके पार्टनर में भी ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, आप अपने पार्टनर का भी करा सकते हैं, तो जिसके करवाने से आपका जो शादी के बाद की जो लाइफ है वो आप और स्मूथली रन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारी ये बहनें समझ गई, अब हम ये बात जरूर समझ गई हैं वो कि उनको क्या कुछ इस समय इस फेज में कर लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शादी के बाद उनको बेबी प्लान करना है, तो बेबी प्लान करने के लिए भी कई तरह की उनको समस्याएं भी आती हैं या कई तरह की प्रॉब्लम्स भी वहाँ एक कपल को फेस करनी पड़ सकती है, तो किस तरह की समस्याएं आप अक्सर देखती हैं कि कपल के बीच आती हैं?
1: जब शादी होती है, शादी के बाद कई तरह के न्यूली मैरिड कपल्स को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो ये सारा ट्रीटमेंट भी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी से 3 मंथ पहले स्टार्ट करनी होती हैं। तो जिससे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या आपकी बॉडी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए फिट है, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप पहली बार डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है आपका BP बढ़ा हो, आपको कभी पता ही नहीं हो क्योंकि आपने कभी चेकअप ही नहीं कराया। डॉक्टर के पास जाएंगे तो BP है, शुगर है, थायराइड है, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हम प्रेगनेंसी से पहले किसी भी फीमेल का कराते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी आपको ट्रीटमेंट अभी चालू हो जाएगा, एक बार आपने कंसीव कर लिया तो ये सारी मेडिसिन हम कंसीव के बाद नहीं दे सकते।
0: क्योंकि अगर माँ हेल्दी होगी तभी बेबी हेल्दी
1: जी
0: होगा।
1: जी अगर आपने अच्छे से अपना ट्रीटमेंट पहले ही ले लिया फिर आप प्रेगनेंसी करेंगे तो आपका बच्चा भी होगा वो हेल्दी होगा।
0: जी तो ये बहुत जरूरी है किसी भी महिला के अपने हेल्थ के लिए प्लस उनके जो उनका जो बेबी होगा।
1: जब हम मोबाइल खरीदते हैं बाजार से तो भी

0: हम सोचते हैं खरीदने से पहले 10 बार सर्च करते हैं, तो ये तो हम एक अपनी फैमिली में एक नए बच्चे को लेके आ रहे हैं, तो बच्चे में कोई समस्या ना हो, क्योंकि बच्चा हेल्दी रहेगा तो आपकी पूरी लाइफ स्मूथली निकल सकती है।
1: बात बेबी की और प्रेगनेंसी की चल रही है, तो एक आज कल्चर चल गया है, कह लो एक टेंडेंसी हो गई है, कई कपल्स में देखते हैं खासकर यंग जनरेशन में, कि बेबी नहीं करना है, यानी बच्चे पैदा ना करने की टेंडेंसी हमारी सोसाइटी में आजकल देखने को मिल रही है। यानी वो अपनी इनकम को तो अच्छा खासा डबल करना चाहते हैं, तो उसके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो बेबी का ये कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो लेना नहीं चाहते हैं। तो इससे हमारी समाज की दशा और दिशा आगे जाके होगी, वो तो होगी ही, साथ साथ इससे जो हमारी महिला है उसके स्वास्थ्य पर आगे जाकर क्या असर पड़ सकता है।
0: ये आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया, क्योंकि आजकल ये बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि लड़कियों की शादी भी लेट होती है, फिर वो प्लान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेशन होती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो हमारे इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल का कैंसर है, उसका भी मोस्ट कॉमन का कारण है वो यही है कि लेट मैरिज और मैरिज के बाद बच्चे प्लान नहीं करना। तो ये तो हमको अगर फीमेल बनाया है तो बच्चे तो फीमेल ने करने तो है ही, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये फीमेल का खुद की बॉडी के लिए भी उसके लिए बहुत एडवांटेजियस होता है। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, फिर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की, अगर आपने ये प्रेगनेंसी बाद में प्लान की तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम 35 की एज के बाद होता है, इसकी वजह से आपके बच्चों को सफर होगा, तो जिसकी कॉम्प्लिकेशंस आपको भी झेलनी पड़ेंगी। एंड्रोमेट्रोसिस, ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो उन फीमेल्स को होती हैं जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है।
1: क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया है तो उसने जो जो चीजें दी हैं तो वो करना भी जरूरी है, यानी प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है हमको। प्रकृति के अगर साथ रहेंगी तो हम महिलाओं का स्वास्थ्य और सुंदरता सब कुछ बरकरार रहेगी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए किसी लेडी का बेबी होता है, अब बेबी होने के बाद में जब हमारा बेबी होता है तो घर परिवार में सभी लोग अच्छा ख्याल रखते हैं और बेबी के स्वास्थ्य की सब लोग बहुत चिंता करते हैं कि बेबी को ये देना है, वो देना है, वो नहीं देना है, लेकिन महिला के स्वास्थ्य के बारे में अक्सर कोई बहुत ज्यादा विचार या बातचीत नहीं की जाती है। तो महिला अपना स्वयं का ख्याल अच्छे से रख सके तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा?
0: मैं फीमेल्स को बोलूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी डाइट में प्रोटीन इनटेक। यूजुअली हम लोग खाना खाते हैं उसमें अगर हम देखें, स्पेशली जो वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, तो उनको अपनी डाइट में प्रोटीन का इनटेक अच्छा रखना चाहिए, जिसके लिए पनीर है, टोफू है और बाकी दूध है, चना है, दालें हैं, ये सारी चीजें अगर आप लेंगे तो आपका प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा। प्रोटीन की कमी की वजह से चिड़चिड़ापन आना, काम में मन नहीं लगना, आजकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद 30 की फीमेल्स अगर हो गई हैं तो उनको अपनी डाइट में कैल्शियम बढ़ाना है, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें का भी हमको ध्यान रखना है
1: जी। और इसके बाद में जैसे जैसे हम महिलाओं की एज बढ़ती जाती है, जीवन की आपाधापी में भाग दौड़ में लगी रहती है, और इस बीच क्या होता है अपना स्वास्थ्य ही कहीं पीछे छूटने लगता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, 40 क्रॉस करते करते तक मेनोपॉज के पास पहुंचते पहुंचते तक इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसका क्या बचाव, क्या किया जा सकता है उसके लिए?
0: ये जो फेज होती है प्री मेनोपॉज फेज होती है, ये हमारी 45 तक चलती है, 45-46 के बाद हमारी मेनोपॉज की फेज शुरू हो जाती है। तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनको इस फेज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ महिलाएं हैं जिनको बहुत ज्यादा होती है, जैसे हॉट फ्लशेज होना, एकदम बैठे हुए हैं, बहुत तेज गर्मी लगेगी कि हमें हवा में कहीं निकलना है, खुद की धड़कने सुनाई देना है, जिसको हम पाल्पिटेशन कहते हैं, किसी किसी को बीपी आना शुरू हो जाता है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये सारी प्रॉब्लम जो है हमारी प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज की फेज में आती है। इसके लिए भी हमको क्या करना है, योगा, मेडिटेशन, डाइट में हमारा कैल्शियम का इंटेक हमको इंक्रीज करना है, इन सब चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना।
1: कभी ये सिम्टम्स जो होते हैं, कभी लोग घर में ये भी समझते हैं कि ये सिम्टम मेनोपॉज की वजह से भी हो सकते हैं, प्री मेनोपॉज की वजह से, और ये सच में भी किसी बीमारी के भी सिम्टम हो सकते हैं, तो इसके लिए कब स्थिति आए कि हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: जब आपको लगे कि आपका ये जो हॉट फ्लशेज है, पाल्पिटेशन है, ये आपको लगता है कि आपका मेनोपॉज के बाद 2-3-4-6 महीने तक इतना है कि आप इसको बियर कर पा रहे हैं, आपने पानी का इंटेक बढ़ाया, आपने डाइट में चेंजेस किया, प्रोटीन बढ़ाया, आपको लगता है कि ठीक है, तो आप इसको अपने घर पर रहकर भी ठीक कर सकते हैं, बट आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग है, जिसकी वजह से आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं, जो वर्क है, आप उसको नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए इसका जो रीजन है वो है हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो अगर ये हमारे नॉर्मल डाइट से या इन सब चीजों से इंप्रूव नहीं हो रहा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल से, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है, जिसके लिए बाजार में हमारे हमारे पास मेडिसिंस भी होती हैं, वो स्टार्ट करके इन सब चीजों को कुछ समय के लिए हम इनको कम कर सकते हैं।
1: लेकिन इसका परमानेंट कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसको?
0: ये अपने आप जैसे जैसे हमारी बॉडी में जैसे ये चेंजेस हैं ये कुछ साल के लिए रहते हैं।

0: है 1 or 2 years के लिए, इसके बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाते हैं और हमारी लाइफ वो होती है वो नॉर्मल की तरह आ जाती है।
1: अच्छा, कब मानना चाहिए डॉक्टर कि मेनोपॉज हो चुका है?
0: इसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, FSH करके एक ब्लड टेस्ट होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास, अगर हमारी वैल्यू उसकी बड़ी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं कि अब मेनोपॉज हो गया है।
1: अच्छा, मेनोपॉज के दौरान कई एक समस्या और आती है, किन्हीं किन्हीं महिलाओं को बहुत ब्लीडिंग होती है महावारी के दौरान, उनको बहुत परेशानी होती है, बहुत पेन भी होता है, और किसी किसी को देखने को आता है कि ये चीज बहुत कम हो जाती है, तो क्या ज्यादा ब्लीडिंग आना भी नॉर्मल है?
0: मैंने आपको बताया जैसे कि अप टू 6 months, 8 months, 1 year तक हम वॉच कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि जो नॉर्मल जो पैटर्न होता है पीरियड्स का वो ये होता है कि 3 months तक मेंसेस नहीं आएंगे। अब चूंकि 3 months तक नहीं आए हैं तो जो आए हैं वो हैवी आएंगे, तो अगर इस तरह का पैटर्न आपका चल रहा है 4, 5, 6 months तक, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा नहीं है, एनीमिया के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट आपको लगता है बहुत ज्यादा है, बट फिर भी मैं ये बोलूंगी कि प्री मेनोपॉजल जो ये कंडीशन होती है इसमें आपको अगर लगता है तो आपको गायने के पास जाना है, हम अल्ट्रासाउंड करा के ये देख सकते हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये हमारे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स है, और पता चला बच्चेदानी में गठान है, बच्चेदानी की झिल्ली बड़ी हुई है, तो ये सब चीजें इग्नोर ना हो तो बेटर तो यही रहेगा कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली जाइए, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड होगा जिससे आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ हमारा जो सब कुछ चल रहा है बॉडी में ठीक है, वो तो आपको जाना ही चाहिए एक बार।
1: बहनों को हम तो यही सलाह देना चाहेंगे और डॉक्टर भी यही कह रही हैं कि अपने जो भी सिम्टम्स हो उनको या बॉडी में जो भी चीजें हो रही होती हैं उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि क्या होता है इग्नोर करती ही हैं महिलाएं, अक्सर क्या होता है कि टालने की प्रवृत्ति हो जाती है कि ये चीज हो रही है अरे होने दो, फिर वो सहन जब तक सहन कर सकती तब तक करती हैं, जब बहुत असहनीय होता तब जाती हैं, और जबकि होना क्या चाहिए कि थोड़ा जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी जाने से क्या होता है जैसे कोई भी बड़ी बीमारी अगर है समय पर अगर वो पता चल जाती है तो उसका फिर उपचार होना,
0: स्पेशली वो फीमेल्स जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उनको अगर पीरियड्स के समय पर ये समस्याएं ज्यादा हो रही हैं कि मेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी वाली जो पेशेंट होते हैं इनको बच्चेदानी का कैंसर होने के चांसेस नॉर्मल महिलाओं से ज्यादा होते हैं, तो इनको अपनी जांच तो अवश्य रूप से करवानी चाहिए।
1: और जांच तो अगर ऐसा इन जांच की अगर बात करें हम महिलाओं को, नॉर्मली एक नॉर्मल महिला को जो स्वस्थ भी है, क्या उनको भी नियमित जांच करानी चाहिए?
0: डेफिनेटली मैं तो यही बोलूंगी कि हमारा ये एक जैसे हमारा बर्थडे आता है, हम प्लान कर लें कि हम साल में एक बार हमारी 30 की एज हुई है, साल में एक बार हमारे बर्थडे के दिन बजाय हम इधर उधर जाने के अपना पैसा वेस्ट करने के सारा ब्लड इन्वेस्टिगेशन एक अल्ट्रासाउंड बेसिक करवा लेंगे 30 की एज के बाद, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ हमारी बॉडी में सब कुछ ठीक चल रहा है। काफी सारी बीमारियां ऐसी जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है वो केवल जांचों से ही पता चल सकता है कि कोई बीमारी है या नहीं।
1: ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं,
0: नहीं आ रहे हैं तो कोई बीमारी नहीं होगी,
1: तभी
0: कुछ बीमारियां ऐसी है जो बहुत लास्ट से पता चलते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर है, वो तभी पता चलता है जब वो स्टेज 4 में आ गया है, तो डेफिनेटली अगर हम टाइम से जाएंगे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो हम उसको टाइम से ट्रीट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, अब हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमने बात की महावारी की भी की और मेनोपॉज की, मेनोपॉजल में प्री मेनोपॉज की अक्सर बात करते हैं, पोस्ट मेनोपॉज खासकर 55 के बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं को, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे?
0: जैसे पोस्ट मेनोपॉजल में जो बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती है वो होती है वजाइनल ड्राइनेस। पेशेंट बोलता है कि उसको वजाइना में इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगी वाटर इनटेक बढ़ाएं, ज्यादा हो रहा है तो आप गायने को जरूर दिखाएं, जिससे कि हम जांच करा के ये देख सकते हैं कि अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है।
1: तो हमने आज बहुत सारी विस्तार से बहनों के बारे में बात की और मुझे लगता है मैंने अपनी बहनों की तरफ से अपनी तरफ से लगभग सभी बातें पूछी और हमारी जो सुनने वाली बहनें बहुत लाभ उठाएंगी। और डॉक्टर शिखा जैन, आज आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू प्रतिज्ञा जी, थैंक यू सो मच।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता जिसका विषय था महिला की बात महिला डॉक्टर के साथ। इस विषय पर जानकारी दे रही थी डॉक्टर शिखा जैन, जिनसे भेंट कर रही थी श्रीमती प्रतिज्ञा देवेंद्र स्वामी। बहनों, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं तो चलिए आज खाना खजाना में बनाते हैं बच्चों के टिफिन के लिए कुछ स्वादिष्ट, पौष्टिक और आसानी से बनने वाली रेसिपी। सबसे पहले हम बनाते हैं वेजिटेबल चीला रोल। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, बारीक कटी सब्जियां जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, यहाँ पर हमने शिमला मिर्च और प्याज लिया है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1 चुटकी, अजवाइन 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च स्वाद अनुसार, बारीक कटा हरा धनिया। बेसन में सभी सब्जियां मिलाएं और पानी डालकर घोल तैयार करें। तवे पर पतला सा चीला बनाएं और इसे धीमी आंच पर उलट

0: पलट कर सेक लें। आप चाहें तो तेल लगाएं या फिर घी। हल्का ठंडा होने पर रोल बनाएं और सॉस के साथ टिफिन में रखकर सर्व करें। बहनों, आजकल बच्चों की फेवरेट है चीज, तो चलिए बनाते हैं चीज कॉर्न सैंडविच। इसके लिए हमें चाहिए आधा कटोरी स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च आधी बारीक कटी हुई, एक प्याज बारीक कटा हुआ, चीज स्लाइस दो, आधा चम्मच पिज्जा सीजनिंग, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, बारीक कटा धनिया, चौथाई चम्मच ऑरिगेनो। एक बर्तन में स्वीट कॉर्न को उबालकर ले लें। इसमें प्याज, शिमला मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया मिला दें। अब सभी मसाले मिलाएं और आधा चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक मिलाकर चीज भी मिला दें। अब इन सभी को हमें ब्रेड के स्लाइस पर फैलाकर ऊपर से एक बर्तन से ढककर धीमी आंच पर इसको, जब तक चीज मेल्ट हो रहा है तो हमें इसको रोस्ट करना है। तैयार है आपका टेस्टी सा सैंडविच। बहनों, जब भी आप बच्चों का लंच पैक करें तो उन्हें कोई भी मौसमी फल जो भी अवेलेबल हो जरूर दें, साथ ही एक छोटा ड्राई फ्रूट।
1: महिला कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान था। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:27 हुए हैं। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
2: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी हो।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: चुचू चिड़िया बड़ी उदास, कैसे बुझाए अपनी प्यास। बहुत कम है कुएं में पानी, तालाबों की भी यही कहानी। धरती का है सूखा पेट, हैंड पंप भी उगले रेत। चुचू रोए नदी किनारे, इसका पानी कहाँ गया रे। बादल आते खाली हाथ और कह जाते पते की बात। हरे भरे मत काटो जंगल, जंगल ही तो लाता मंगल। पेड़ लगाओ तुम सब मिलकर, बरसेगा फिर पानी जमकर। नदी ताल में होगा पानी, फुर्र होगी चूचू की परेशानी।
2: आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चुनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे सुरीली तान।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 होने जा रहे हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हमें प्राप्त हुआ है और कलाकार हैं पुरुषोत्तम तिवारी। इनसे आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। कार्यक्रम का आरंभ इस निर्गुण भक्ति रचना से।

पुरुषोत्तम तिवारी के स्वर में अभी आप सुन रहे हैं ये लोक भजन, और इस लोक भजन के बाद आप सुनेंगे देवी गीत। कलाकार एक बार पुनः पुरुषोत्तम तिवारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पुरुषोत्तम तिवारी के गाए हुए कुछ भजनों और लोकगीतों का आनंद लिया। अभी ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से हमें प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:45 हुए हैं। ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति। कलाकार हैं नरेंद्र शर्मा। इनसे सुनिए कार्यक्रम की ये पहली भेंट। ये भजन है डॉक्टर उपेंद्र विश्वास का लिखा हुआ।

और इसी गीत के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से प्राप्त हुआ था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:57 हुए हैं हम अभी हाजिर हुए इस अंतराल के बाद।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दो बज चुके हैं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा। ये रहा

बी पार्क को अभी इस वक्त आपने सुना। स्काई फोर्स फिल्म का नाम था। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था, तनिष बागची ने संगीत तैयार किया था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: शाबा फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं ने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया है और इस प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं, जिससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है।
2: गणेश जी की मूर्तियां बनाने वाले अभी से सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है कि आपके घर या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है, इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर

0: महीने के बीच इस समय द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स से संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहे हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइने की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान किया करता है। डॉक्टर यादव ने एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाकर उनके स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के संकल्प को सशक्त किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं। इन संशोधनों से कारोबार सुगमता बढ़ेगी और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरण समय पर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोपहर 3 बजे भोपाल से प्रदेश स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक के लगभग 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश भर में अब धीरे धीरे बारिश का दौर प्रारंभ हो चुका है। राजधानी भोपाल में कल रात गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं शिवपुरी में मानसून की पहली तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरे पाए गए। उधर रतलाम में बारिश के कारण सड़कें और अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। झाबुआ में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई। विदिशा में दिनभर की उमस और गर्मी के बाद शाम को हुई बारिश से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले के ग्राम मेलवार में जल जीवन मिशन के तहत जल अर्पण दिवस का आयोजन किया गया। रायसेन, झाबुआ और छतरपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। और शिवपुरी जिले में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा नस्ल आधारित ब्रीडर एसोसिएशन गठित किए जाएंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
3: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
3: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
2: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
3: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
2: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
3: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
3: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
3: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ कर के रहे।
2: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
3: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा

0: दिखाने का अच्छा अवसर दे रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों

0: वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। आप सुनिए बच्चों का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति है।

मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को स्टूडियो में उपस्थित बच्चों और प्रीति दीदी की जय हिंद। साथ ही सभी बच्चों को दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज 28 जून है और आज जन्मदिन होता है हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री का जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की। आपका पूरा नाम पामुला पार्थी वेंकट नरसिम्हा राव था। 28 जून 1921 में जन्मे नरसिम्हा राव का जन्म तत्कालीन हैदराबाद के नरसमपेट मंडल के लखनेपल्ली गांव में हुआ था। आपने कानून से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आप स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। जानते हैं बच्चों, पीवी नरसिम्हा राव एक दो नहीं बल्कि 17 भाषाएं बोलते थे। आपकी रुचि राजनीति तक ही सीमित नहीं रही, आपको साहित्य और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। प्रधानमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। उससे पहले आप केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाल चुके थे। और यही नहीं बच्चों, आप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में आपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 9 फरवरी 2024 को आपको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, ये तो थी आज की बात भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बारे में। अब चलते हैं हमारे आज के क्रम आओ जाने की ओर, जिसमें आज हम जानेंगे हमारे देश के ऐसे प्रसिद्ध कवि के बारे में जिनके दोहे अपनी दिनचर्या के दौरान देश के लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, या यूं कहें हमारी भाषा में रच बस गए हैं, साथ ही पाठ्य पुस्तकों का भी हिस्सा है। आपकी रचनाएं भजन के रूप में भी गाई जाती हैं, पर आपने साकार ब्रह्म को मानने के बजाय निराकार ब्रह्म की उपासना की। बच्चों, हम बात कर रहे हैं संत कबीरदास की। आपका जन्म 1398 ईस्वी की ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को काशी में हुआ था। कुछ इतिहासकार आपका जन्म 1440 ईस्वी मानते हैं। बच्चों, ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा कल यानी कि 29 जून को है। इस हिसाब से कल सारे देश भर में उनकी जन्म जयंती मनाई जाएगी। बच्चों, कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली रूढ़िवादिता, ऊंच नीच के भेद पर कुठाराघात किया, यानी उन्होंने कहा कि भगवान ने सबको एक सा बनाया है तो फिर ऊंच नीच क्यों। आपने कहा कि प्रकृति के कण कण में भगवान बसे हुए हैं, प्रकृति के हर जीव में भगवान है, उन्हें किसी पूजा स्थल में ढूंढने की बजाय अपने भीतर ढूंढा जाए तो मिल जाएंगे। मोखा कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, खोजी हों तो तुरतई मिले हों सब सांसन की सांस में। कहने वाले संत कबीर 1518 में परमात्मा में विलीन हो गए। बच्चों, हम बात संत कबीरदास जी की कर रहे हैं, तो आइए जुड़ते हैं बाल भवन के बच्चों के साथ और सुनते हैं कबीरदास जी का लिखा हुआ ये प्यारा सा भजन।

0: बाल भवन के बच्चों, श्रद्धा, अवनी, मानवी और पूर्वांश के इस कबीर भजन के बाद अब जुड़ते हैं कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं उनके साथ, और देखते हैं, जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं।
1: हाँ भाई, अभी सबसे पहले हमारे साथ कौन है? हाँ, क्या नाम है बेटा?

0: शिवांशी।
1: शिवांशी, शिवांशी क्या सुना रही है?
0: राइम।
1: राइम, कौन सी राइम है, सुनाओ।
0: मम्मी बोली हमसे बेटा क्या बनोगे, पापा बोले हमसे बेटा क्या बनोगे, सिपाही मैं नन्ना सिपाही हूँ, देश की खातिर लड़ता हूँ, आगे है बंदूक मेरी सीना तान के चलता हूँ, दाएं बाएं ठा ठा ठा।
1: बहुत अच्छी कविता हमको शिवांशी ने सुनाई, देश के सैनिकों के ऊपर ये कविता है। और सही बात है, हमारे देश के सैनिक हमारे लिए सीमाओं पर डटे हुए हैं बिना किसी डर के, तभी हम यहाँ पर रहते हैं बिना किसी डर के। अब हमारे साथ अगला कौन जुड़ रहा है?
0: मुझे एक और कविता सुनानी है।
1: अच्छा, शिवांशी को एक और कविता सुनानी है, सुनाओ।
0: बिल्ली मौसी कहो कहाँ से आई हो, कितने चूहे मारे तुमने, कितने खा के आई हो, क्या बताऊँ लोमड़ी भाई, आज ना कुछ पेट भरा, एक ही चूहा पाया मैंने, वो भी बिल्कुल सड़ा हुआ।
1: बहुत अच्छी कविता भाई, कितनी सारी कविताएं और कितनी सारी कहानियां आज हम सुनेंगे। ठीक है, अब अगला और कौन हमारा बाल साथी हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
2: दिया जैन।
1: क्या तैयार करके आई है?
2: पोयम।
1: चलो सुनाओ।
2: सूरज जग में करे उजाला, चांद चांदनी देने वाला, टिमटिम करते आते तारे, खड़े हैं ऊंचे पर्वत सारे, नदियां बहती जर जर करती, सागर में लहरें उठ जाती, झरने नदियों में हो जाती, भाती भाती के पेड़ सजाते।
1: बहुत ही अच्छी पोयम सुनाई है प्रकृति के बारे में हमको रिया ने। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बेटा? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
3: मेरा नाम आराध्या जैन है।
1: आराध्या, क्या तैयार करके आई है?
3: मैं आज एक कहानी तैयार करके आई हूँ।
1: कहानी, चलिए कविताओं के बाद कहानी, कौन सी कहानी है?
3: एक कहानी है, उसका नाम है जादुई खेत और दो आलसी भाई।
1: चलो भाई, तो सब तैयार हो जाइए जादुई खेत की कहानी सुनने के लिए।
3: एक गांव में राम और श्याम नाम के दो सगे भाई रहते थे। उनके पिता ने उन्हें मरने से पहले एक बड़ी सी जमीन दी थी और कहा था कि इसके अंदर एक जादुई खजाना छुपा है। खजाने के लालच में दोनों ने रोज उस खेत में जोतना शुरू कर दिया। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कोई सोना चांदी नहीं मिला। थक हार कर राम ने उस खाली खेत में मक्के का बीज बो दिया। कुछ ही महीनों में खेत हरा भरा फसलों से भर गया। दोनों ने फसल को बाजार में बेचा और उन्हें भारी मुनाफा हुआ। तब उन्हें समझ आया कि पिताजी का मतलब जादुई खजाने से इसी मेहनत और फसल से था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत का फल हमेशा मीठा और लाभदायक होता है। धन्यवाद।
1: एक बहुत ही अच्छी कहानी आराध्या ने हमें सुनाई है। कहानी का सार यही था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और सही बात भी है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हमें सफलता नहीं मिल सकती। अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
4: अंशु जैन।
1: अंशु, अंशु क्या तैयार करके आया है?
4: कविता।
1: कविता, कौन सी कविता है?
4: फादर्स डे।
1: अच्छा, फादर्स डे अभी जो हमने मनाया है उसके बारे में कविता है, चलो सुनाओ।
4: जिनके कंधों पर बैठकर दुनिया देखी, जिनसे जीने की हर राह सीखी, उन पापा को दिल से सलाम, आई लव यू पापा।
1: तो भाई, जितने भी पिता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी पिताओं के लिए उनके बच्चों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? क्या नाम है आपका?
5: अभी।
1: अभी, अभी क्या सुना रहा है?
5: कविता।
1: कविता, कौन सी कविता है?
5: बादल डे।
1: फादर्स डे के ऊपर, चलिए फिर एक बार और हमारे पास फादर्स डे की कविता आ गई है, सुनाओ बेटा।
5: पापा मेरी तान, पापा मेरी दान, I love you papa।
1: अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है बेटा? क्या नाम है आपका?
6: निशु।
1: निशु, निशु क्या तैयार करके आए हो?
6: कविता।
1: कविता, कौन सी कविता है?
6: देखो नाच रहा है मोर।
1: देखो नाच रहा है मोर, बारिश आने वाली है और मोर नाचने वाला है, सुनाओ।
6: देखो

0: रहा है। मोर घूम घूम कर चारों ओर खोल लिए हैं सारे पंख, रंग रंगे न्यारे पंख, बारे चारी रंग और हो मोर मचाता एक दम टोल, कहता है कू कू इतना बेचा यहाँ वहाँ।
1: भाई कविता के साथ साथ मोर की आवाज़ भी निशांक ने हमें सुनाई, तो इसके लिए निशांक को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी बच्चे बहुत खुश भी हो गए होंगे। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? सबको मज़ा आ गया, सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हाँ, आपका नाम क्या है?
2: स्मिता जैन।
1: स्मिता, आप क्या सुना रही हैं?
2: कहानी।
1: कहानी, कौन सी कहानी है?
2: दीपक और सूरज की कहानी।
1: दीपक और सूरज की कहानी सुनाइए।
2: एक छोटा दीपक सोचता था कि उसकी रोशनी बहुत कम है, वह हमेशा सूरज जैसा बनने की इच्छा करता था। एक रात गांव में अंधेरा छा गया, तब उसी दीपक ने लोगों को रास्ता दिखाया। उसे समझ आया कि किसी की महानता उसके आकार से नहीं बल्कि उसके काम से होती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने गुणों को पहचानो और उसका सही उपयोग करो।
1: बहुत ही बढ़िया कहानी है, और वाकई में हमें सभी के गुणों को देखना चाहिए और उसी से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हम गुण तो देखते नहीं हैं, केवल ऊपरी चीज़ों को देखकर सोच लेते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ख़राब है, या ये सही हो सकता है, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा गुणों को देखना चाहिए और फिर उसकी परख करना चाहिए। अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
3: आगम।
1: आगम, आगम क्या सुना रहा है?
3: कहानी।
1: कहानी, कौन सी कहानी है?
3: एकता का बल।
1: एकता का बल।
3: एक बहुत बड़ा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते थे। जंगल का राजा शेर था। शेर बहुत दयालु था, इसलिए जंगल के सभी जानवर बिना किसी डर के खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर जंगल के सभी जानवर रहते थे। उसी पेड़ के चीकू नाम का एक बंदर भी रहता था। उस बंदर को भूख लग रही थी, तो वह बंदर केला खाने जंगल में गया था। जब वह वापस आया बरगद के पेड़ में, तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उसके पेड़ को काट रहा है। चीकू ने लकड़हारे को समझाने की कोशिश की, लेकिन चीकू की बात लकड़हारे ने नहीं मानी। फिर चीकू ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और सभी जानवरों को बताया कि यह बरगद का पेड़ काट रहा है। सभी जानवरों को पूरी बात बताई, तभी शेर ने दहाड़ मारी। सभी जानवरों ने लकड़हारे के ऊपर पत्थर फेंक कर उसे मारने लगे। फिर लकड़हारा वहां से डरकर भाग गया। सीख: एकता में बहुत शक्ति होती है।
1: सही बात है, अगर हम ठान लें तो एक होकर के बड़े से बड़ा काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब आगे हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है?
4: आमर्श जैन।
1: आमर्श क्या सुना रहा है?
4: कविता।
1: कविता सुनाओ।
4: अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर से अपने अभी तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेले बहुत से खेल, पर जब तू चली गई थी जब मैं रह गई अकेली। तू सो गई होगी पर मुझे नींद नहीं आई, पर कथा पढ़ पढ़ के बड़ी देर में सो पाई।
1: आपका क्या नाम है?
5: ओजस जैन।
1: ओजस, ओजस क्या सुना रहे हैं?
5: कहानी।
1: कहानी सुनाइए।
5: छह दोस्त जंगल से जा रहे थे, उन्हें भूख लगती है। आगे एक आम का पेड़ लगा होता है। पहला दोस्त कहता है कि नीचे गिरे हुए आम उठा लेते हैं। दूसरा दोस्त कहता है कि पेड़ पर लगे आम तोड़ लेते हैं। तीसरा दोस्त कहता है कि टहनी तोड़ लेते हैं। चौथा दोस्त कहता है कि डाली तोड़ लेते हैं। और पांचवा दोस्त कहता है कि पूरा पेड़ उखाड़ के ले जा लेते हैं, सभी आम और लकड़ी मिल जाएगी। छठवां दोस्त कहता है कि फल पूरा पेड़ों से भरा हुआ है, इसे छोड़ देते हैं। यह कहानी सिखाती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए और पेड़ पौधों तथा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए।

0: चाहिए, अधिक लालच नुकसान का कारण बनता है।
1: बहुत ही अच्छी कहानी वो जिसने हमें सुनाई है। और हम इंसान क्या करते हैं, लालच में ही रच बस गए हैं। अगर हमें कुछ धोना है तो हम जरा सा पानी लेके नहीं धोएंगे, सीधा नल के नीचे ले जाके धो लेंगे ताकि पानी बहता रहे। और गाड़ी धोनी है तो नली लगा के पूरे में पानी बहाते रहेंगे, ये नहीं कि बाल्टी का उपयोग कर लें। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति की हर एक चीज़ को बचाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की हर चीज़ बहुत मुश्किल से हमें मिलती है, सीमित मात्रा में है। अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी, इसलिए अभी हमें चेतने की ज़रूरत है, चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है। अब और हमारे साथ कौन जुड़ रहा है, क्या नाम है बेटा आपका?
2: मेरा नाम परान जैन है।
1: परान, परान क्या सुन रहा है?
2: मैं एक शिक्षक पर कविता सुना रहा हूँ।
1: तो भाई चलो, हमारे शिक्षकों के लिए समर्पित है परान की ये कविता।
2: आप देते हो हमें शिक्षा, फिर लेते हो हमारी परीक्षा, गलती करें तो हमें समझाते, हम रोए तो हमें हंसाते, माता ने दिया है जीवन दान, आप बनाते हो इसे महान, ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो, विद्या का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का करो सम्मान।
1: बहुत अच्छी सीख हमें दी है परान ने अपनी कविता के माध्यम से। हमारे शिक्षक हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिना कहे ही सिखाते हैं, केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते बल्कि व्यावहारिक रूप से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और सभी शिक्षकों को परान की इस कविता के माध्यम से नमन। और इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। कार्यक्रम मुस्कान से प्रीति दीदी को सभी बच्चों के साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

बच्चों का कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र का योगदान था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दो बजकर 58 मिनट होने को हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंट बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मूर्ति मिट्टी की लेने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाया करती हैं। इससे हमारी नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब से कुछ देर में भोपाल से प्रदेश स्तरीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करेंगे। 28 से 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में 5 साल तक के लगभग 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योग अभ्यास किया। उन्होंने कहा कि योग हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान किया करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैतूल के कुकरू में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षा खुराक भी पिलाई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यहां ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी और खंडवा सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न हो उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। युवा दोस्तों के कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:02 पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है शाम 6:00 से और 6:30 आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जाने वाले महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 3:02 होने को हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर ही आप हमारे प्रसारण को शाम 5:00 से पुनः सुन सकते हैं। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आपसे भी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये हैं सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीणा देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लूराम पूरन रोहित छोटू डुनडुन और इनके परिवार वालों ने। और ये हैं वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद। आप सभी सुनिएगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत सुनना चाहते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन की धुन।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहेगी
2: मनचाहेगी
1: मनचाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था। मैंने भरसक कोशिश की, पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी। कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डायन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे। उनको धक्का सा लगा, आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई। इस धक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी।

0: लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
0: अल्लाह बख्श नहीं आया पैक?
1: आते ही होंगे।
0: देखो शकुंतला
2: जी,
0: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं, और देखो तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
2: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
0: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
2: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब। मैं उस खिलौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ, आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
0: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
2: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
0: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
1: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रही है, तुम निडर बनो बेटी।

0: गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो उमा, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। देखो तो, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं।
1: हेलो।
0: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्व विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
1: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
0: आपके नर्सिंग होम की तुलना में। भाती, तुम्हें खुशखबरी सुनाओ। सुनाओ। मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
0: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
0: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
1: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण। अगर
3: डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
0: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानती हो उसे उमा?
0: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार सामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
2: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
0: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
2: तब
0: खुद कुमार सामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
1: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
0: जी हाँ।
2: तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है।
0: कैसी चिट्ठी है?
2: इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
1: अरे, ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
2: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
2: इस वक्त कुमार सामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
2: चलो, उस बेचारे दुखियारी की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
0: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
2: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
1: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती ही हैं भैया।
2: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
0: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
2: मदद? तुम
0: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
2: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
0: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
1: हों। नहीं, ये बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
2: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहां मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहां एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
0: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
2: वहां एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
0: भारती,

0: मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुंच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
1: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
0: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
1: अरे भाई सब्र करो सब्र करो, तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
0: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी हम चलते हैं।
2: अच्छा भाई फिर मिलेंगे। हाँ
1: अच्छा, बाय बाय।
3: मुझे तो पहले ही मालूम था।
1: क्या मालूम था तुम्हें?
3: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
1: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
3: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
1: ये भी कम हटीली नहीं है।
3: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दे?
1: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
3: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
1: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
3: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
1: फिर
3: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
1: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
4: कंपाउंडर
3: जी अभी आया।
4: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
3: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
4: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है, पर अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजा से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
3: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
4: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हाँ, मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
1: जी बहुत अच्छा।
5: अरे इस छोकरे की उछल कूद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
6: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट किया, फटकार दिया।
5: अजी जानते हैं आप, कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
6: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
5: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
6: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
5: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
6: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है। आजकल गाँव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है। इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
5: अजी बढ़िया, धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
6: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
5: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
6: शाबाश, ये हुई काम की बात, देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
7: डॉक्टर साहब,
4: क्या हुआ भाई? ये खाओ, ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
7: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
4: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
7: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
8: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
7: दवाएं क्या हुई?
8: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
7: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
4: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
7: अच्छा,
4: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
7: ठीक है,
8: मैं मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
4: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
2: डॉक्टर साहब, एक बात है।
4: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
2: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
4: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
2: वो उमा जी के घर
9: में, मर्द नायकम जी के घर में क्या बात है?
2: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
4: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
9: डॉक्टर साहब,
4: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
2: डॉक्टर साहब,
4: कौन है?
2: डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
4: आप कौन है? अरे जानम्मा, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
2: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
4: क्या,
2: कुमार स्वामी के घर?
10: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है, और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
4: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकते हैं।
10: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
2: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
4: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
2: आपकी बार तो अल्लाह बख्श के साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
4: नहीं नहीं, आप वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
8: डॉक्टर साहब,
4: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
10: उस कमरे।
4: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
8: आइए डॉक्टर साहब, इधर से
4: चलिए।
10: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं, आंखें खोलो बेटा।
4: कंपाउंडर
9: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
4: लो।
9: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
4: कोई भी दवा बेकार है।
8: डॉक्टर साहब, नहीं नहीं नहीं।
4: कंपाउंडर
9: जी,
4: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
9: जी,
4: चाय निकले काफी देर हो चुकी है,
10: नहीं
4: ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम
8: जाने दो।
4: कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम लीजिए, भगवान ने दिया उसी ने वापस।
8: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब, मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फिकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
11: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता।
4: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
9: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
4: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया, आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
9: चलो
4: चलो
10: बेटा।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये सब तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा,
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: कैसे आप? अरे डियर भारती, तुम आ गई। मैंने सोचा कोई बहाना बनाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए।
4: हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
4: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
4: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए चलिए। भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा, इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती हो,
0: फिर भी
1: एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है,
0: ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी है अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
5: एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
5: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोग्य स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किबार तोड़ डाली और भीतर
0: गजब हो गया। भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?

0: कोई भी इमारत के अंदर घुसने की हिम्मत मत करना, तोड़फोड़ की तो बहुत बुरा होगा, खबरदार।
1: बड़ी आई है, हमें डराती है, हटा पीछे।
0: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
1: ए लखो, चलाओ पत्थर।

0: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
1: पुलिस ने एन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
0: जो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
1: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
0: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
1: आइए आइए आइए।
2: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
1: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
2: चलो

0: जल्दबाजी की। आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
1: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
2: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
1: चिंता की कोई बात नहीं, और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा, तो मामा जी को समझा देना उमा।
2: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
0: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
1: हाँ, डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
0: जरूर जरूर।
1: और देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
0: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
1: गुड बाय।

0: महसूस रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है। मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये माँ।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल से टोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग। नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का ये था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में, उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था जैसे मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अम्बेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफ़ी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है, और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी।

0: जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज़्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा सब कुछ, वो जिस तरह से आया था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता
1: अपने
0: पाएगा।
1: आप में एक एनसाइक्लोपीडिया,
0: पीडिया, हाँ वो
1: आप
0: तो
1: किसी
0: करेक्ट
1: भी विषय का जिक्र करें तो वो पेज खुल जाएगा,
0: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज
0: हाँ
1: हम क्लिक करते हैं ना
0: हाँ
1: वैसा
0: हाँ वैसे वैसे
1: मामला
0: तो ही हिमसेल्फ वॉज अ सर्च इंजन, इस तरह से हम कह सकते
1: था।
0: हैं।
1: यस
0: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना ज़रूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो,
1: एक व्यापक दृष्टिकोण
0: व्यापक
1: मिला।
0: दृष्टिकोण है ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूँ और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूँ। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे,
1: बिल्कुल
0: और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे, तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस
1: बिल्कुल।
0: समझ का।

बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं अलग अलग।

0: रिश्यो में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो
1: हाँ
0: खेल जाते हैं, उस
1: राइट
0: रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्धसत्य की तरफ जाना
0: यस
1: पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है
1: बहुत, हाँ,
0: जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी, तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी।
0: बिल्कुल
1: ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी वो।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को
1: हाँ
0: दौड़ जाती है,
1: हाँ
0: मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है। जबकि कितने कम दृश्य हैं और
1: साढ़े
0: वो
1: तीन
0: पूरे
1: सीन्स
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और
1: बहुत ज्यादा।
0: उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो, वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहां से ही आगे
1: हाँ,
0: चलेंगे।
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में, बिकॉज मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार, इस तरह से था। और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते, तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊँ वहाँ पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कहा कुछ है, 3 साढ़े 3 सीन है। 3 साढ़े 3 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी, तो हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है, बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे स्पोर्ट्स के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
0: अरे
1: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम, तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमिडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
0: देर से आती थी,
1: 1-1.5 साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: वाह वाह
1: फिर
0: वाह
1: एक
0: वाह,
1: सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम
0: गिर
1: लोग
0: जाते।
1: ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे, इस तरह से था। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर। तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं, रामा शेट्टी से पैसे नहीं ले सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल। सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं और
1: हाँ
0: रातों
1: हाँ
0: रात बंदा स्टार बन
1: स्टार
0: जाता
1: बन
0: है
1: जाता है, करेक्ट
0: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और
1: राइट
0: यहां अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या
1: क्या
0: धमाका हो
1: हुआ
0: चुका है।
1: है, करेक्ट।
0: वाह।
1: उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर कुछ किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था तो उनका फोन बजता था, हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
0: इतने
1: उस
0: फोन आ रहे हैं
1: इतने फोन आने लगे,
0: तुम्हारे।
1: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, छः छः सात सात महीना एक एक साल फोन आने में लग जाता था, पर
0: जी
1: बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी
0: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में
1: एक्चुअली
0: करता
1: तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
0: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता
1: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसी ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है। पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा, हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है, मैनेजमेंट कैसी करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडरवैल्यू कर रखा है
0: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार, तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
1: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे, पर छूटा कभी नहीं था।
0: हाँ।

0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया, नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है। उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात, मीना कुलकर्णी के साथ, जो सुपर हिट था। और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की।
1: जब वो बहुत
0: सड़क,
1: बड़े स्टार बन
0: बहुत
1: चुके
0: बड़े
1: थे।
0: स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे। क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: तब
0: थी,
1: उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं थी।
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो,
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था, और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर
1: क्या
0: हुआ
1: बात
0: करते
1: है,
0: थे।
1: क्या
0: ये
1: बात
0: टू
1: है।
0: थाउजेंड थ्री फोर की बात कह
1: खुद
0: रही
1: ही
0: हूँ मैं।
1: डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं
1: और को
0: नहीं
1: दिया था?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले,
1: वाह,
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं,
1: जी
0: उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है, उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल। ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक
0: हाँ
1: उनका बस
0: हाँ हाँ
1: था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वॉज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे, उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको।
0: बहुत मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी,
1: जी,
0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी। क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो 3 दिन, एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे। क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स 3-3, 4-4 साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा। ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे। तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा, तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले
1: वाह वाह वाह
0: हैं।
1: वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था।

0: मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ. पापा तो बाहर का होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आर डिसीजन मेकिंग. हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे. पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स. कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था, यार अभी नहीं करना है बस. और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था. तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख, जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली. तो उन्होंने कहा, अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए. और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था, कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूँगा. और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना. उस समय सैटेलाइट टेलीविज़न आ गया था, तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे. तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर, वो एक एक हफ्ते के लिए उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे
1: अच्छा,
0: ये फिल्में देखनी है,
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: वो फिल्में वो देखते थे वहाँ बैठकर.
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नज़र हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे. तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज़्यादा दुनिया वो घूमे. उस वक्त तो बड़े बड़े कैमरास होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमरास होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह
0: में
1: वाह,
0: जहाँ भर भी वो जाते थे. राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहाँ पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहाँ पर उनके साथ उनका कैमरा होता था. तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है, जो पापा ने बनाया हुआ है, उसमें अगर आप कभी जाओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहाँ जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है
1: वाह,
0: जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं.
1: क्या
0: उसमें
1: बात है,
0: फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स. तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, ये डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना. तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी. तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था. और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसट है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी. तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीज़ें थी जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को, और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे. और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफ़ी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूँ मैं. तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवसट हो गए, या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: वाह
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना. तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे. तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं गए साथ में.
1: वाह वाह
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल, डे वन से, जैसे याद है, जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब तो उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी, टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे. जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईंट ईंट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में एक छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे. और वहाँ पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहाँ पर रूम्स बनाए हुए थे. तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। तो दादी कहते थे कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा। सबको खिलाते थे।
1: हाँ।
0: और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो पर उनके दोस्त बॉम्बे में किसी काम से आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह।
0: हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई होता,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था। या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था, या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर।
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई, उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निळु फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी, और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, निळु फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निळु फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था
0: नाटक करके, जो
1: नाटक
0: जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रुपए 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल

0: नमस्कार। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अपनी संध्याकालीन सभा का आरंभ हम कर रहे हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस के बाद आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पहले न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के तहत प्लास्टिक के कचरे से पर्यावरण अनुकूल ईंटें बनाए जाने का उल्लेख किया है और उनकी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने द्विपक्षीय वार्ता की है। इससे पहले सेशल्स ने प्रधानमंत्री मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। इस अवसर पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्री राम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। शाम 7 बजे से खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत की दरकार रहेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा नियमित एवं संयमित जीवन शैली, बेहतर स्वास्थ्य का राज। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं, पर वार्ताकार हैं कुमारी इशिता गौड़। साथ ही हम क्रम जीवन आलोक में चर्चा करेंगे खेल हमारे जीवन में अनुशासन सिखाते हैं विषय पर, और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं क्रम आज की बात में हमारे आज के विषय पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों

0: का संरक्षण आज की आवश्यकता पर। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। आज के आधुनिक युग में उद्योगों, परिवहन, कृषि, शिक्षा और घरेलू कार्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। ऊर्जा के प्रमुख पारंपरिक स्रोतों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और लकड़ी आदि शामिल हैं। ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक बन गया है। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित होते हैं, जिन्हें पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। कोयले और पेट्रोलियम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण के लिए कई उपाय अपनाए जाने चाहिए। सबसे पहले, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद रखना चाहिए। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ईंधन की बचत करना महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग, कारपूलिंग और साइकिल चलाने जैसी आदतें पेट्रोल और डीजल की खपत को कम कर सकती हैं। दोस्तों, उद्योगों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ऊर्जा की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके साथ ही वैकल्पिक और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और बायोगैस जैसे स्रोत पर्यावरण के अनुकूल हैं और लंबे समय तक उपलब्ध रह सकते हैं। यदि इन स्रोतों का व्यापक उपयोग किया जाए तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होगी और उनका संरक्षण संभव हो सकेगा। सरकार और समाज दोनों की इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण का महत्व पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस विषय के प्रति संवेदनशील बने। प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य है कि वह ऊर्जा की बचत करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। दोस्तों, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। इनका संरक्षण केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। ऊर्जा की बचत, वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग तथा जन जागरूकता के माध्यम से हम इन संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का संरक्षण आज की आवश्यकता ही नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय नियमित एवं संयमित जीवन शैली बेहतर स्वास्थ्य का राज पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है, स्वास्थ्य ही धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह अपने जीवन के सभी कार्यों को उत्साह और दक्षता के साथ कर सकता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो धन, पद और सुख सुविधाएं निरर्थक लगने लगती हैं। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य नियमित एवं संयमित जीवन शैली में छिपा है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, संतुलन और संयम को अपनाते हैं, वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, नियमित जीवन शैली का अर्थ है कि व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को निश्चित समय पर करे। समय पर उठना, भोजन करना, व्यायाम करना, अध्ययन करना या पर्याप्त नींद लेना नियमित जीवन का आधार है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से करता है तो उसके शरीर की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत रहता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके विपरीत, अनियमित दिनचर्या व्यक्ति को अनेक बीमारियों का शिकार बना सकती है। दोस्तों, संयमित जीवन शैली का अर्थ है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना, जैसे भोजन, मनोरंजन, कार्य और आराम, सभी में संयम आवश्यक है। आज के समय में लोग स्वाद के चक्कर में जंक फूड, तेलीय भोजन और शीतल पेयों का अत्यधिक सेवन करते हैं, जिससे मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इसलिए भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध, दालें और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल करना आवश्यक है। साथियों, नियमित व्यायाम और योग भी स्वस्थ जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम और योग को देना चाहिए, जिससे शरीर में चुस्ती और तंदुरुस्ती बनी रहती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और मानसिक तनाव कम होता है। दोस्तों, योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मन को भी शांत और एकाग्रता प्रदान करता है। यही कारण है आज विश्वभर में योग को स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जा रहा है। साथियों, पर्याप्त नींद भी नियमित एवं संयमित जीवन शैली का एक आवश्यक भाग है। नींद शरीर और मस्तिष्क को आराम प्रदान करती है। यदि व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसे थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। नियमित एवं संयमित जीवन शैली व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार, आत्मसंयम तथा तनाव प्रबंधन जीवन को सुखद बनाते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और नकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव प्रसन्न रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सफलता और आनंदमय जीवन की कुंजी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नियमित एवं संयमित जीवन शैली अपनाकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में हमारे आज के विषय वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं पर आपको वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है इशिता गौड़।
1: मित्रों, हम जानते हैं कि सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनमें से केवल पृथ्वी ग्रह पर ही ज्ञात जीवन है। पृथ्वी पर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटक हवा और पानी हैं। यदि हम देखें तो पाते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवधारियों के लिए जल और वायु का होना अत्यंत आवश्यक है। इन दोनों के अभाव में जीवन की कल्पना करना असंभव है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो आवरण है, जो पर्यावरण है, उसमें हवा पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, जल हो, परंतु मनुष्य की महत्वाकांक्षी होने से, सुविधाभोगी होने से, विकास की ओर अग्रसर होने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हवा का, पानी का, जमीन का प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। कारण एक ही है कि मनुष्य की महत्वाकांक्षा के लिए कारण होने वाला विनाश। हम अपने मकान बनाने, कारखाने लगाने, उद्योग लगाने, भोजन के लिए, खेती बढ़ाने के लिए वृक्षों को काट रहे हैं। जंगल की जमीनों पर, नदियों पर, नालों पर और समुद्र तटों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और वहाँ पर नवीन निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे वृक्षों की संख्या निरंतर घट रही है। विभिन्न प्रकार के जीवों की खाद्य श्रृंखला घट रही है। जीवों के प्राकृतिक रहवास कम हो रहे हैं। प्रदूषण एवं अतिक्रमण के कारण उनके व्यवहार में भी परिवर्तन हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं विभिन्न पर्यावरण संस्थानों के अनुसार पर्यावरण को संतुलित रहने के लिए न्यूनतम 33% जंगल का होना चाहिए। परंतु हम देख रहे हैं कि निवास के लिए हम जंगलों का सफाया करते जा रहे हैं, चाहे रोड बनाना हो, हाईवे बनाना हो, रेल लाइन बिछानी हो, बांध बनाना हो या उद्योग स्थापित करना हो, इन सब के लिए जंगलों की बलि चढ़ रही है। हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमें वहाँ पर हरी भरी घाटियाँ मिलेंगी या फिर बर्फ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे, परंतु कुछ हिल स्टेशनों पर देखते हैं कि वहाँ मानव निर्मित संरचना नजर आ रही है, जैसे कि होटल, इमारतें आदि। भारत का मशहूर पर्यटन स्थल मसूरी अपनी विशेष वनस्पति और झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजों ने मसूरी में बसाहट की तो वहाँ की हरी भरी वादियों ने उन्हें आकर्षित किया था। परंतु अब हम देखते हैं कि पहाड़ियों से झाड़ियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं और वहाँ पर कंक्रीट का जंगल बन गया है। इसके कारण मसूरी की जलवायु भी बदल गई है। जो ठंडा स्थान था अब वह थोड़ा सा गर्म हो गया है और पर्यटक भी जो पहले शुद्ध हवा पानी के लिए घूमने जाते थे वो भी अब कम हो गए हैं। वैज्ञानिक एवं प्रकृति शास्त्री मानते हैं कि देश की वन संपदा उसके वायुमंडल और ऋतु चक्र को प्रभावित करती है। वनों के अविवेकपूर्ण दोहन का कुपरिणाम देश के सामने उपस्थित हो रहा है। जहां एक ओर जीवन के उपयोगी वन पदार्थ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश का प्राकृतिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है। वर्षा, गर्मी और जाड़ा अनिश्चित रूप ले रहे हैं। वृक्षों में वर्षा के अतिरिक्त जल को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वनों के विनाश के कारण आजकल भयंकर बाढ़ आ रही है। भूमि के क्षरण के कारण धरातल का गठन परिवर्तन हो रहा है। अगर इसी गति से वन विनाश जारी रहा तो आगामी कुछ वर्षों में देश की वन संपदा भी समाप्त हो जाएगी और समाज का ये आत्मघाती प्रयास इसे संकट में डाल देगा। वृक्ष मानव का चिर साथी है। वह अपना सर्वस्व मानव की सेवा में अर्पित कर देता है, किंतु मनुष्य अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे काट डालने से नहीं चूकता। वृक्षों के प्रति मनुष्य की इसी कृतज्ञता को गोविंद माथुर ने व्यक्त किया है। जिस आदमी को अपना सर्वस्व देते हैं पेड़, वही आदमी पृथ्वी से अलग कर देता है पेड़। वृक्ष मनुष्य को अपने उपकारों की याद दिलाता हुआ स्वयं को ना काटने का अनुरोध करता है। मैं तुम्हारा चिर मित्र वृक्ष हूँ, मुझे मत काटो। हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि कहीं हमारा अंधाधुंध विकास तो हमारे लिए विनाश का कारण नहीं बनता जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि विकास को तो हम नहीं रोक सकते। वर्तमान परिस्थितियों में विकास के कारण हम अपना जीवन आराम से जी रहे हैं। निवास के लिए, दैनिक उपयोग के लिए, वर्तमान जीवन शैली के लिए हम वृक्षों की विभिन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं और इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। अगर मैं आम नागरिक बनकर अपने स्तर की बात करूं, तो हमें वृक्षों को लगाना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए। प्रकृति ने हमें लाखों तरह की वनस्पति दी है। कुछ मिलीमीटर से लेकर मीटरों तक के वृक्ष हमारी धरती पर उपलब्ध हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पौधरोपण कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड तक भी जीवित नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन या प्राणवायु ही प्राणों का आधार है और यह आधार हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश एवं पानी से वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वातावरण में छोड़ते हैं। वृक्ष जीवित प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन उपलब्ध है, वह हमें एकमात्र स्रोत वनस्पति से ही प्राप्त होती है, यानी वृक्ष ही हमें प्राणवायु देते हैं। भारतीय संस्कृति में, धर्म में, साहित्य में, लोक संस्कृति में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्षों की तो पूजा की जाती है, वृक्षों को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। पीपल, तुलसी, आंवला, बरगद, बेलपत्र आदि वृक्षों की तो हमारे यहाँ पूजा करने का रिवाज है। इसके अलावा नीम, गिलोय, एलोवेरा, जामुन, अर्जुन आदि वृक्षों को तो सीधे ही औषधियों का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेदों में, आयुर्वेद में तो वनस्पति के माध्यम से रोग निदान और स्वस्थ रहने का वर्णन है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति मानव जीवन को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। महाग्रंथ महाभारत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं पीपल वृक्ष हूँ, यानी वृक्ष स्वयं ईश्वर का अवतार है। पुराणों में वर्णन है कि वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, यानी कि वृक्षों की महिमा का वर्णन पुरातन साहित्य में भी किया गया है। वृक्ष न केवल वायु बल्कि मानव जीवन का आधार हैं, सहचर्य हैं, ना कि आवास के लकड़ी फर्नीचर के लिए। लकड़ी खाना बनाने के लिए अंतिम संस्कार में लकड़ी का उपयोग और विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए हम लकड़ी पर निर्भर हैं। लकड़ी से हमें लिखने वाला कागज़ मिलता है। मित्रों, आजकल टिश्यू पेपर का चलन बढ़ रहा है और वो भी वृक्षों से ही बनता है। झाड़ू, डलिया, छप्पर, कूलर की टटिया और ना जाने हजारों लाखों वस्तुएं ऐसे ही पेड़ों से बनती हैं। हमारे भोजन के लिए सैकड़ों खाने की सामग्री हमें खेती वाले पौधों से नहीं बल्कि जंगलों से मिलती हैं, जैसे शहद, गोंद, बेर, करौंदे, ककोरे आदि वनों से मिलने वाले वनोपज हैं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार होने के बावजूद भी हम वृक्षों के महत्व को अनदेखा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि घने जंगलों में बारिश ज़्यादा होती है, रेगिस्तानों में कम वर्षा होती है। उसका कारण वृक्षों का ना होना ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि पृथ्वी पर वर्षा का कारण जंगलों में पेड़ों का होना ही है। अगर हम शिवपुरी जिले की बात करें तो यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है, पथरीला भी है, इसलिए यहाँ पर खेर, बेर, पलाश, सलोई, करघई आदि के पतझड़ प्रजाति के वृक्ष हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि यहाँ के जंगल प्राकृतिक रूप से लगे हैं। चट्टानों में वृक्ष लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमें इन वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम वृक्षों की टहनियों का उपयोग करें, उसके तने और जड़ों को लगा रहने दें जिससे वह दोबारा पनप सके। हमारे यहाँ की जलवायु देखते हुए हमें नीम, आंवला, चिरौल, कनेर, पीपल, जामुन, आम आदि के वृक्ष लगाने चाहिए। आज लोग विदेशी प्रजाति के पेड़ लगाते हैं जो सुंदरता तो देते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं है। इसीलिए हमें अपने ज़िले स्थान के अनुशीलता के अनुसार पौधे लगाने चाहिए। अगर स्थान की कमी हो तो घर में ही तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट आदि फूलों के पौधे लगाना चाहिए। शासन द्वारा भी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष वन महोत्सव सप्ताह भी मनाया जाता है। आइए मित्रों, हम ये संकल्प लें कि इस बार वर्षा काल में हम कम से कम 5 वृक्ष अवश्य लगाएंगे और ना केवल स्वयं वृक्ष लगाएं बल्कि दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो आइए वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाएं।
0: साथियों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता विषय वृक्ष लगाएं पर्यावरण बचाएं पर। वार्ताकार थी कुमारी इशिता गौड़। आइए साथियों, अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय खेल हमारे जीवन में अनुशासन सिखाते हैं पर चर्चा करने का। दोस्तों खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि हमारे शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों के माध्यम से व्यक्ति अनेक गुण सीखता है जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन जीवन को व्यवस्थित सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। दोस्तों खेलों में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी कुछ नियमों और निर्देशों का पालन करता है। बिना नियमों के कोई भी खेल सफलतापूर्वक नहीं खेला जा सकता। चाहे वह क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो या अन्य कोई खेल, सभी में निर्धारित नियम होते हैं। खिलाड़ियों को समय पर मैदान में पहुंचना, अभ्यास करना, प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करना और खेल भावना बनाए रखना पड़ता है। इन सभी बातों से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का विकास होता है। दोस्तों खेल हमें समय का महत्व भी सिखाते हैं। एक खिलाड़ी नियमित रूप से अभ्यास करना सीखता है। यदि वह समय का पालन नहीं करता तो वह अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाता। नियमित अभ्यास से व्यक्ति में समय प्रबंधन की आदत विकसित होती है। यह आदत आगे चलकर पढ़ाई, नौकरी और जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाती है। साथियों खेलों के माध्यम से व्यक्ति आत्मसंयम सीखता है। खेल के दौरान जीत हार दोनों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छा खिलाड़ी जीत मिलने पर घमंड नहीं करता और हार मिलने पर निराश नहीं होता। वह अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखता है। यह आत्मसंयम अनुशासन का ही एक रूप है जो व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। खेलों से टीम भावना और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है। दोस्तों खेलों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो अपने कार्यों को अधिक अनुशासन और एकाग्रता के साथ कर सकता है।

सकता है। खेल तनाव को कम करते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। साथियों, आज के युग में जब लोग मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में अधिक समय बिताते हैं, तब खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। खेल न केवल शारीरिक सक्रियता बनाए रखते हैं, बल्कि युवाओं को अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी खेल को अवश्य शामिल करना चाहिए। दोस्तों, खेल हमारे जीवन में अनुशासन का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें समय का सदुपयोग, नियमों का पालन, आत्मसंयम, जिम्मेदारी और टीम भावना सिखाते हैं। इन गुणों के कारण व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए और इसके माध्यम से अनुशासित और सफल जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सेल्फी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: पुलिस?
4: मिस सीमा
3: जी,
4: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
4: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
4: 1,00,000 बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
4: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
5: हेलो मम्मा।
6: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और हेमा सरदेसाई के साथ शंकर महादेवन की आवाज में। फिल्म है परदेस और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने। परदेस फिल्म के मुख्य सितारे थे शाहरुख खान और महिमा चौधरी।

शैला बाबू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, और इसके पहले आपने सुना कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाज़ में कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गाना। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर से।

बाबू छेला बाबू छेला मैं बाबू छेला बाबू छेला।

ये जो मोहब्बत है फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहित चौहान की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के तहत इंग्लैंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे शाम 6:30 से शाम 7:10 तक, फिर शाम 7:21 से रात 8:45 तक। रात 8:45 के बाद आप सुनेंगे समाचार और फिर रात 9:15 से मैच की समाप्ति तक आंखों देखा हाल आप सुनेंगे, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब बात करते हैं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कल यानी सोमवार 29 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता दें। कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा गुड मॉर्निंग जबलपुर। कल का आकर्षण होगा संत कबीरदास की जयंती और श्रीमती सुनंदा पटेरिया की कहानी समर्पण सुनिएगा। कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम। एनसीईआरटी इसके प्रायोजक हैं, कार्यक्रम है उमंग। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा पंडित राजन मिश्र साजन मिश्र का राग पूरिया में ख्याल गायन। फरमाइशी

0: गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा मन भावन रात 10:30 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत शाम 7:21 पर। कल आप इसमें सुनिए डॉक्टर नम्रता जैन से ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा स्वीट कॉर्न की उन्नत खेती। इसके अलावा सुनिएगा लोक संगीत। प्रादेशिक समाचार दर्शन सुनिएगा शाम 6:45 पर और आजकल का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:40 पर। ये थी जानकारी कल 29 जून सोमवार को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समाचारों के लिए चलते हैं दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
2: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
1: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
2: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। और अब चलते हैं संस्कृत समाचार के लिए, उसके बाद सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप प्रतियोगिता के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। फिलहाल समाचार।

0: वर्षपर्यन्तम् उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स् देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स् देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अन्तरिक्षादि विविधविषयेषु महत्वपूर्णसहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीयनागरिकाः सञ्चेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाशमानसरोवरयात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशियादेशे सुरक्षास्थितिः तीव्रगत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च ICC महिला T20 विश्वकप् स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिलादलम् अद्य लण्डन् नगरे आस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेशनिर्मितस्य मेक इन इण्डिया C-295 सैन्यपरिवहनविमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसम्पन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि चत्वारिंशत् विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु BTech पाठ्यक्रमस्य शुभारम्भं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेनासम्बन्धि कार्यक्रमं सम्बोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तम् उत्तरोत्तरं सुरक्षितम् आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2.5 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य चतुर्दशोत्तर एकशत पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्यरूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्तिनिर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मयमूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय संबोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परमगौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर्देशयोर् दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल् प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स् देशे भारतस्य UPI तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्णयात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाशमानसरोवरयात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीयतीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य

0: cricket match to be played between India and Australia of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to our special program, First Ball 20.
1: First Ball 20.
2: क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स, जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, अमर हो जाता है। और आज इसी ऐतिहासिक मैदान पर भारत की बेटियां अपने विश्व कप सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान देने उतरेंगी। सामने है 6 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन भारत के सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सेमीफाइनल का दरवाजा खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका की बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत का जीतना जरूरी है। जीत तो अंतिम 4 का टिकट, हार तो विश्व कप का सपना यहीं थम जाएगा। ऐसे में हर चौका सिर्फ रन नहीं होगा, हर विकेट सिर्फ सफलता नहीं होगी, ये होगा करोड़ों भारतीय दिलों की उम्मीदों का जवाब। तो क्या लॉर्ड्स की बालकनी आज भारत के जज्बे की गवाह बनेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ रुकेगा या फिर इतिहास एक नया मोड़ लेगा? मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। फर्स्ट बॉल 20 में मेरे साथ है मेघा और हमारे साथ 3 विशेष मेहमान हैं, पूर्व क्रिकेटर ख्याति गुलानी, बीसीसीआई
3: आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 234। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, इस पर सुनिए विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा आत्रे से बातचीत। इस कार्यक्रम को आप फिर से सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए त्रिवेणी, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00 और रात्रि 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4:00 सेहतनामा में सुनिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने, शाम 6:35

पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है उलझन। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट, लेखक महावीर सिंगल, निर्देशन आनंद किशोर माथुर का। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए, रात्रि 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। छायागीत का समय रहेगा रात्रि 10 बजे। आलेखो स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

0: खुदा है कहाँ रे तू।
1: अभी आपने पी के फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा था सोनन किरकिरे ने, संगीत शांतनु मोइत्रा का था। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में 20 साल बाद फिल्म का गाना। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सरिता
1: मित्रों नमस्कार। आप सुधी श्रोताओं के लिए आज हम चुन लाए हैं एक प्रख्यात गायक कलाकार से की गई भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित सीआर व्यास। व्यास जी नमस्कार।
3: नमस्कार
2: व्यास जी, आपके षष्ठी पूर्ति समारोह में श्री पीएल देशपांडे ने बड़ा रोचक और बड़ा ही सुंदर भाषण देते हुए कहा था कि कलाकार कभी रिटायर्ड नहीं होता, और उनमें से आप एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल
3: है? वो तो बात सच है, क्योंकि कलाकार जब अपने कला में मग्न रहता है और पूरा टाइम उनको दे के अपनी साधना करता है, वो कहते हैं कि कलाकार ये सोच में कितना साल गुजरे उनको खुद को मालूम नहीं होता है, वो तो विचार में अपने हमेशा के लिए वो तरुण नहीं रहता है।
2: बहुत सुंदर। व्यास जी, आपने संगीत की शुरू की तालीम प्रारंभिक कब शुरू की?
3: 10 साल से शुरू किया।
2: 10 वर्ष की आयु से?
3: 10 वर्ष की आयु से। लेकिन पहले जो मैं गाता था वो तो हल्का फुल्का गाना गाता था। जब मैं 14-15 साल का हो गया तब किराना घराने में
2: जी
3: मेरे पहले गुरु जी थे पंडित गोविंद राव भातम्ब्रेकर।
2: अच्छा।
3: उससे मैं तालीम पाया 6-7 साल उनके पास सीखता था मैं
2: जी
3: उसी टाउन करके जो हाँ वहाँ जहाँ रहते थे वो
2: जी
3: वो तो वहाँ मैं तालीम पाया, और वो खुद को कहते थे कि वो किराना घराने के गायक है।
2: अच्छा। लेकिन जैसे कि सब लोग जानते हैं कि आप ग्वालियर घराने के गायक हैं।
3: हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि मेरा जब स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मैं सोचता था तब मेरा गाने का बहुत मैं आगे जा चुका था, लेकिन मेरा खुद का विचार ऐसा नहीं था। मैं मेरे को ऐसी जगह चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मुझे अच्छी तालीम मिलेगी। जब मैं बम्बई आया मेरा उम्र था 18 साल की
2: जी,
3: और तब मैंने ग्वालियर
2: घराने
3: के राजा रामबा पराडकर जो थे मेरे गुरु जो कैलाशवासी पंडित राजा रामबा पराडकर से तालीम शुरू किया।
2: ग्वालियर घराने के बारे में कहा जाता है कि ग्वालियर घराने की गायकी अपने आप में एक समृद्ध गायकी है।
3: उस घराने की पहली एक स्पेशलिटी यानी मतलब था कि भाई जो गायक एक राग में
2: जी
3: अनेक ख्याल गा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: कोई गायक वो ग्वालियर घराने में ऐसा रहते थे कि भाई एक यमन राग लिया है उसमें एक ही ख्याल आता है, एक द्रुत ख्याल आता है, एक बड़ा ख्याल आता है, उसे वो तो 15-15, 20-20 ख्याल एक एक रागों में बहुत आसानी से गाते याद करते थे।
2: ग्वालियर घराने का उपजंग के बारे में भी
3: ये
2: सुना कि बहुत
3: उपजंग तो हर घराने में रहती है।
2: अच्छा।
3: कलाकार में होना चाहिए, लेकिन उपजंग क्या होता है वो समझना बड़ा
2: जिसके जरा हमें समझाते हुए
3: इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा।
2: वैसे
3: तो मैं थोड़ा बताता हूँ कि अभी एक समझो एक राग है जैसा केदार है।
2: अच्छा।
3: तो अभी आलाप में

0: ऐसा वो ले रे लगाने का जो तरीका है ना
1: जी,
0: ये एक उपजांग ही समझा जाता है कि वो हर एक अलाप में वो अलाप बढ़ाते बढ़ाते वो रे ऐसा ही लगाना चाहिए। अतः ये एक सुर का हो गया। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उपज का एक सुरों का पुंज होता है
1: जी,
0: जैसा केदार में लेंगे मम रे सा रे सा रे रे सा सा मम रे सारे सारे रे सा सा। अभी ये छोटा हो गया ना, इसमें ले में गा में जब उसकी तान बनती है ना मम रे सारे सारे रे सा सा मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा पापा मम रे सारे रे सा सा रे रे सा सा दादा पादा पापा मामा पापा मम रे सारे सारे रे सा सा। ये जो उपज है ना वो हमेशा के लिए ऐसा एक रूल था, यानी नियम था वो घराने में कि जब एक उपज चालू हो गया तो उपज की पूर्तता वो आखिर में वही चीज आना चाहिए
1: जी,
0: तब उपज की पूर्तता हो गया।
1: तो ग्वालियर घराने में भी आलाप और
0: ये सब बातें थी, आलाप बोल आलाप, पहले बोल आलाप फिर बोलांकित कुछ ताने,
1: कुछ ख्याल पर ज्यादा उनका ध्यान रहता था।
0: ख्याल ख्याल हाँ, ख्याल तो याद करना पड़ा, ख्याल तो पहले अगर ग्वालियर घराने में पहले ये नियम था कि जब कलाकार अपने स्टेज पे बैठ के प्रोग्राम देता था तो पहले वो ख्याल की बंदिश उसकी स्थाई दो दफे गा के लेंगे, बाद में अंतर दो दफे गाएंगे, फिर उसके बोल आलाप जो भी कुछ गाने का ढंग होता है उस ढंग से चले गए। बिना ख्याल पूरा गा के कभी वो गाना चालू नहीं करते थे। अगर ऐसा किया तो कुछ कलाकार ऐसे मानते थे कि उसको तालीम अच्छी नहीं है।
1: व्यास जी, ग्वालियर घराने के साथ साथ आपने आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित से भी तालीम हासिल की।
0: हाँ, बहुत।
1: तो अपने गायन में आपने आगरा घराने की गायन शैली के किन अंगों को अपनाया है?
0: राम सिंह साहब, एक बात है कि एक बात बताना पड़ेगा मुझे। जगन्नाथ बुआ पुरोहित जिसको जिनको जिनका गाने में नाम था गुनीदास
1: जी, हाँ,
0: तो आगरा घराने में तो तालीम पाया
1: जी,
0: खासा है बुलाते विलायत हुसैन खा साहब के पास बहुत साल वो सीखते थे
1: जी।
0: लेकिन मैं जब बुआ साहब के पास गया तो इस सोच में नहीं गया था कि मैं आगरा घराने की गायकी सीखना चाहिए मुझे।
1: अच्छा,
0: लेकिन मैं उनके पास गया एक बात में कि भाई वो बहुत बहुत भावनिक गाते थे।
1: अच्छा,
0: खुद बुआ साहब
1: जी,
0: तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि मेरे गाने में ये बात आना चाहिए। अभी इसको बहुत लोग ऐसे बोले थे कि क्या भावनिक गाना का क्या होता है अभी, और ये ग्वालियर में नहीं था, आगरा में नहीं था, तो ये तो बताने की बात है। हम बोलेंगे वही ग्वालियर में क्या होता है, जमेली भूली जो बागोला बैगुंदेला ओरे मालनिया जमेली भूली जो, ये ग्वालियर का पेताड़ा ही ऐसा है। उस सब गायकी ऐसी जाएंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आगरा की जाएंगे, पहले ख्याल गाएंगे फिर ऐसे ही गाते जाएंगे, लेकिन उसमें भाव नहीं प्रकट होता है। जैसा भाव अगर वो जगन्नाथ बाबा जब गाना सुनेंगे ना तो वो एक भाव प्रकट होता था कि भाई कैसा भाव है,

0: सुर लगाने का तरीका
1: जी।
0: और उसमें भाव प्रकट करना, यानी आप खुद कलाकार कुछ ऑडियंस को कहने को चाहता है ऐसा लगता है।
1: वो
0: इस बात को मैंने ध्यान देके और ये अपना चाहिए, इसके लिए भी बुआ साहब के पास।
1: आप जैसे कलाकारों ने तो अपने जीवन में वर्षों की सतत साधना की और तब जाकर किसी एक मकाम पर पहुंचे हैं। आज की जो तरुण पीढ़ी है वे संगीत को आज पूरा समय अर्पित नहीं कर सकते, मतलब जीवन यापन भी जरूरी है और साथ साथ ये भी आशा रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सीख भी जाए, प्रसिद्धि भी पाए।
0: वो तो एक बड़ा ऐसा सवाल आप पूछा है, यानी बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आज के जो तरुण कलाकार है वो बड़े अच्छे हैं,
1: अच्छा
0: बड़े अच्छे गाने वाले हैं और बड़े टैलेंटेड है
1: जी।
0: लेकिन तालीम कहाँ से पाना चाहिए, कैसी पाना चाहिए और जो तालीम मिलती है वो अच्छी है या नहीं, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो जानकर वो जाएंगे और तालीम हासिल करेंगे कहाँ से, तो बड़े अच्छे गायक बन जाएंगे और अपना गुजारा भी उनके ऊपर कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कोई यंगर टैलेंट्स है मेरे
1: अच्छा।
0: सामने
1: और बड़े आशावादी हैं कि भविष्य बड़ा उज्जवल है हमारा देश,
0: बहुत अच्छे अच्छे अच्छे यंगर जनरेशन में मैंने देखा है, बॉयज है गर्ल्स है, बहुत अच्छे गाते हैं
1: सीख रहे हैं।
0: लेकिन इतना ही बात है कि जैसे पुराने जमाने में तालीम एक बात होती है, वो तालीम नहीं पा सकते वो, और वो तालीम अच्छी तरह से पाना चाहिए उसने, देखना चाहिए कि भाई हम जो करते हैं वो ठीक तरह से करते हैं कि नहीं।
1: आपकी बातचीत में मैं इन बातों का पता चला कि एक तो निष्ठा की बड़ी आवश्यकता है, एकाग्रता और साधना,
0: ये सब बातों पे ही निर्भर है ये कला। अगर कोई निष्ठा नहीं रखेंगे, अपने गुरु से सीखते हैं लेकिन गुरु से निष्ठा नहीं रखते हैं, तो ये तो बात चलेगी नहीं।
1: व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। नमस्कार
0: भी आपका। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे पंडित C.R. व्यास से की गई भेंट वार्ता। भेंट वार्ता कर रहे राम सिंह पवार। ये भेंट वार्ता वर्ष 1985 में विविध भारती से पहली बार प्रसारित हुई थी। प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली।

पंडित सी आर व्यास का गाया हुआ राग बिहाग आपने सुना। श्रोताओ, आज हमने पंडित सी आर व्यास से की गई भेंट वार्ता सुनाई है। इसके साथ ही अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।

सवा लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस शौर्य गाथा की कड़ी में हम रुख करते हैं सदा सर्वदा विजयी भारत भूमि के एक ऐसे प्रांत की तरफ, जहां गुरु गोविंद सिंह की ये वाणी दुश्मनों की धमनियों में रक्त जमा देती थी। ये बुलंद आवाज दुश्मनों के प्रति हुंकार ही नहीं थी, अपितु ये भारत के वीरों की परंपरा और विरासत है। मातृभूमि के रक्षकों और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की ये भूमि है पंजाब, जहां गुरु गोविंद सिंह, माता गुजरी और उनके बेटों की वीरता, देशभक्ति और उनकी कुर्बानियां इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हैं। शेरे पंजाब की ये वो पावन धरा जहां महाराजा रणजीत सिंह, महारानी जिंद कौर जैसे सच्चे देशभक्त हुए, जिन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए। शहीद आजम भगत सिंह के नाम की कस्में आज भी खाई जाती हैं। अमर शहीदों की इस धरती में जन्मे श्री सदगुरु राम सिंह, लाला लाजपत रॉय, भाई परमानंद, वीर उधम सिंह, सुखदेव थापर, बलवंत सिंह, बंता सिंह धामिया और भाई वतन सिंह जैसे देशभक्त, जिन्होंने वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। पंजाब की बसंती हवाओं में आज भी सुरूर इनका है। हर फूल की मुस्कुराहट इनकी कर्जदार है, जो आज आजाद वतन की फिजाओं में सांस लेती है। फौजी साथियों, आज के शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि की इसी पावन धरा पंजाब।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं।

किशन सिंह औरों से जरा हटकर थे, जितने खुश मिजाज उतने ही संजीदा। उनका कर्तव्य बोध, उनके देश के प्रति निष्ठा और उनकी मेहनत रंग लाई। फौज में उनके जाने का सपना साकार हुआ और महज 16 साल की उम्र में सन 1933 में उन्होंने सिख रेजिमेंट ज्वाइन की। बिशन सिंह इसे अपनी खुशकिस्मती मानते थे कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला। अपने कॉल के पक्के, दिल में देशभक्ति का जज्बा और जुनून, अनवरत आगे बढ़ने की चाह, वक्त के पाबंद, फरमाबरदार और जुनून की हद तक देश सेवा की भावना ने उन्हें फौज का एक जाना माना चेहरा बना दिया। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में देश विदेश में होते बदलाव का असर सभी पर व्यापक था। इस समय काल में जंगें भी बहुत लड़ी गईं, जिनमें भारतीय सेना ने बरतानिया हुकूमत के ध्वज तले कई युद्ध लड़े, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी था। इस युद्ध में बिशन सिंह हर उस मोर्चे पर भी सफल रहे जिसकी अगुवाई उन्होंने की और कभी शिकस्त न खाई। उन्हें सरदार बहादुर और कई और खिताबों से तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत ने नवाजा। फिर वो घड़ी भी आई जब देश आजाद हुआ। आनंद के एहसास से दिल भर भी न पाया था कि युगों युगों से एक संग रहती भारत भूमि के मानचित्र पर लकीर खींचकर इसके दो भाग कर दिए गए। ये दर्द ऐसा

था कि जिसकी टीस हर एक ने महसूस की, घर उजड़े, मकान छूटे, दिल टूटे, परिवार बिखरे, वतन छूटा और यहाँ तक कि मवेशी भी अपनी पनाहगाह तलाशने लगे।

1947 में देश के विभाजन के साथ ही हमारे देश से अलग हुए मुल्क ने सीमा पार से कबायली हमले तेज किए। छुप छुप कर होते इन हमलों ने देश की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को बेहद संवेदनशील बना दिया। इन हमलों को रोकने और दुश्मनों को सबक सिखाने के मद्देनजर बिशन सिंह के नेतृत्व में दिसंबर 1947 को जम्मू कश्मीर में पहले सिख यूनिट को तत्काल प्रभाव से रवाना किया गया, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद बिशन सिंह ने भारतीय सेना को चुना और यहीं अपने वतन की सेवा करना चाहा। सिख रेजिमेंट के इस जाबाज अफसर को युद्ध का खासा अनुभव भी था और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति से भी वो भली भांति परिचित थे। हालांकि इस सरहदी इलाके में युद्ध का खतरा पहले से ही मंडरा रहा था। फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

अक्टूबर माह 1947 से ही भारतीय सेना की सरगर्मियां यहां देखी जा सकती थीं। बंकर में छिपी शत्रु सेना के रह रहकर होते हमले दिन ब दिन बढ़ते ही जाते थे। सीमा पार से कबाइलियों की घुसपैठ और तेज हुई और भारत के सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जाने लगा। सूबेदार बिशन सिंह की सेना के कूच करने से पहले ही दुश्मन फौज ने भारतीय सैनिकों की पहले भेजी गई टुकड़ी पर हथगोले और धारदार हथियारों से हमले किए और आगे बढ़ती भारतीय सेना के लगभग 10 जवानों को अपना निशाना बनाया। हमारी सेना के कुछ जवान इस हमले में घायल भी हुए। आगे बढ़ते इन जवानों को बिना वक्त गवाए बिशन सिंह की सेना ने कवर दिया और मोर्चे पर सबसे आगे खुद सूबेदार बिशन सिंह थे।

और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। उनकी इस वीरता को प्रत्यक्ष देखकर उनके साथी सिपाहियों के हौसलों का ठिकाना न था। अपने सेना नायक की भांति बाकी सैनिक भी शत्रुओं पर कहर बन के टूटे। हताश और बदहवास दुश्मन सैनिकों ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए और भागना ही मुनासिब समझा। लक्ष्य अपने मकाम तक पहुंच चुका था, जीत पक्की थी। शत्रु के इलाके को घेरते हुए उनके बंकरों पर भी बिशन सिंह और उनके फौजी साथियों ने कब्जा कर लिया। इस बीच एक बंकर की ऊंचाई पर हालात का जायजा लेने के मद्देनजर बिशन सिंह तेजी से चढ़े। जहां घात लगाकर बैठे शत्रु ने अपनी LMG बंदूक से बिशन सिंह पर निशाना साधा और इस लाइट मशीन गन से निकली गोलियां सूबेदार बिशन सिंह के सीने में पैबस्त हो गईं। उनकी सांसें थमने लगीं। अब भी अपनी बंदूक को थामे लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़े बिशन सिंह और गोलियां बरसाते रहे। धुंधली आंखों में अब भी फतेह का तिरंगा लहरा रहा था कि उखड़ती सांसों ने जिस्म को निढाल कर दिया और सरजमीन हिंद का ये बांका सिपाही मां भारती और अपने वतन को आखिरी सलाम कर चल दिया उस अनंत पथ पर जहां से फिर शायद कोई कभी लौट कर नहीं आता। आती है तो बस उनकी यादें।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित सूबेदार बिशन सिंह की शौर्य गाथा। दिसंबर 1947 में भारत से अलग हुए मुल्क के साथ लड़ी गई ये जंग देश के इतिहास में एक ऐसी जंग थी जिस पर हौसलों से फतह पाई गई। पहली सिख रेजिमेंट के शेर दिल सिपाही सूबेदार बिशन सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के सफल संचालन से भारतीय सेना को इस मोर्चे पर फतह हासिल हुई और दुश्मनों को शिकस्त। कबाइलियों और दुश्मन सेना को इस कदर पीछे धकेल दिया गया कि इस जंग से आज भी शत्रु खौफ खाता है। जिस मरने ते जग डरे मेरे मनी अनंत, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। जिन भारत माता के सपूतों के ऐसे हौसले हों उन्हें भला दुश्मन कब मार सकता है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के बीच आज राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सतत विकास, हरित विकास और जलवायु अनुकूल विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। एक संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत और सेशल्स हिंद महासागर को साझा विरासत मानते हैं और इसकी सुरक्षा, स्थिरता तथा समृद्धि दोनों देशों की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेशल्स के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अनुभव साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गणेशोत्सव के दौरान भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं, इससे हमारी नदियों, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा हुआ करती है। श्री मोदी ने आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की महिलाओं द्वारा अनूठे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान का भी जिक्र किया।
1: मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है।
0: जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने प्रोजेक्ट हॉक आई के तहत प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तैनात की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी शासन को और सशक्त बनाने तथा ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे कहा,
2: उजड़ते हुए गांव को फिर से बसाया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। मैं जानता हूं ऐसे गांव जहां सड़कें नहीं थी, कच्चे रास्ते से ट्रक जाते नहीं था गांव में, बीमार को खटिया पे धर के लाना पड़ता था।

0: एक नहीं अनेकों जो निष्पक्ष विश्लेषण हुए उनमें कहा है। कई राज्यों की कई बेस्ट प्रैक्टिस है, कल समय मिला तो मंत्रियों के सामने जिक्र करूंगा। उन राज्यों को अप्रिशिएट करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सड़कों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सकता है। और वैसे ही दीनदयाल कौशल योजना, मुझे लगता है इसके स्वरूप को और व्यापक बनाने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से अभी संख्या कम है और अलग अलग चीजें कैसे जोड़ सकते हैं, कम समय में ट्रेनिंग देके, प्रशिक्षण देके स्किल्ड करने का।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरीके से विलुप्त हो गए थे, लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बैतूल जिले के कुकुरु में एक कार्यक्रम में स्वसहायता समूहों की महिलाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के प्रयासों, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की सराहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान एक कृषि सखी विनीता ने अपनी बात रखी।
3: मेरे द्वारा 4 गांवों में 250 किसानों के साथ 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है और हमारे समूह में 82 भी मिली है, जिसमें हम जैविक उत्पाद बना रहे हैं। जीवामृत, नीमास्त्र, अग्निअस्त्र, बीजामृत ये बना के हम हमारे स्थान से किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रही है हमारी बहनें SHG के माध्यम से।
1: ग्राम कुकरू में ही आयोजित एक ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांव से दूध, फल और सब्जी आदि का दोपहिया से परिवहन करने वाले किसानों और स्वसहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
4: एक अभियान हमने चलाया हुआ है कि हमारे भाई बहन जो खास करके गांव से दूध, फल, सब्जी मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं, ऐसे में कई सारे किसान भाई बहनों की दुर्घटना में मृत्यु या घटना घायल हो जाते हैं, तो हमने हेलमेट सबको लगाना चाहिए, इसलिए हम जा रहा अभियान चला रहा है कि सबको हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्दी जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का शुभारंभ किया। 3 दिन तक चलने वाले अभियान में 1,07,00,000 बच्चों को पोलियो दवा पिलाई जाएगी। उधर इंदौर में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कलेक्टर शिवम वर्मा ने किया। कार्यक्रम के दौरान एक जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं सतना जिले में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने जिला चिकित्सालय से पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश के नर्मदापुरम, धार, झाबुआ और आगरमालवा सहित सभी जिलों में 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो दवा का सेवन कराया जाएगा। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून के अगले 3 से 4 दिनों के भीतर आगे बढ़ने की संभावना है। अभी तक मानसून प्रदेश के 15 जिलों तक पहुंच चुका है। आज भोपाल सहित प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभाग सहित प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी नहीं पहुंचा है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। भोपाल में आज पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण प्रहरी अभियान का शुभारंभ किया गया। छिंदवाड़ा में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं नशा तस्करी निरोधक दिवस पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में छात्र छात्राओं को मादक पदार्थों के प्रकार, मादक पदार्थों से संबंधित कानून तथा नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी दी गई। और राजगढ़ में हिंदू साम्राज्य दिवस के अवसर पर कल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में छत्रपति वीर शिवाजी महाराज और भारत माता की आकर्षक झांकियां शामिल हुई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स में देश के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित, दोनों देशों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान और सुमन पंचायत का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और प्रदेश के 45 जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे वैन शिपले का इलेक्ट्रिक गिटार, आज की फिल्में हैं हावड़ा ब्रिज और अजनबी।

0: अभी आप सुन रहे थे हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत कंवर जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: थोड़ा सफर का मजा लीजिए। है हुजूर
1: देखो ना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए अजनबी फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज कार्यक्रम समाप्त होता है।

हवामहल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं राजेश भदौरिया की लिखी झलकी लड़ी नजरिया लड़ी। निर्देशक हैं गुरुमीत रामलमीत।

0: नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी, अरे लड़ी नजरिया लड़ी।
1: हाँ, आज तो बड़े बाबू भाई, वाह क्या कहने। अरे किसका कत्ल करके चले आ रहे हैं?
2: देखो चौबे, औकात में रहो।
1: क्या बात है, आज आपके होंठों पर आशिकी नगमा।
2: गुनगुना क्या दिया, लग गया सबको चरपरा। और जब पिद्दी से लौंडे आजकल तरह तरह के गाने गाते फिरते हैं, तो हमने जरा सा गुनगुना दिया, इसमें कौन सा धधकता हुआ ज्वालामुखी ब्लास्ट हो गया।
1: आप तो खामखा आग बबूला हो गए बड़े बाबू।
2: और नहीं तो क्या, गुलगुला हो जाऊं।
1: देखिए बड़े बाबू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि आप राशन पानी लेकर ऊपर चढ़ बैठे।
2: और कैसे कहा जाता है, जो कहना था वो सब तो कह दिया, बहुत है इज्जतदार के लिए इतना।
1: भाई क्या कह दिया, जरा मैं भी तो सुनूं।
2: आशिकी नगमा, कत्ल करके आए हो। अरे मैं कहता हूं, और क्या कह सकते हो।
1: भाई बड़े बाबू, रोज आपके मुंह में पान और होठों पर महंगाई का रोना, या तो फिर दूसरों को कोसना, या इसकी शिकायत उसकी शिकायत, लेकिन आज वाह वाह क्या बात है, किसकी तरफ से आने वाले हैं गर्मा गर्म समोसे।
2: लो एक और आ गए। चाहे सवेरे घर में चाय तक ना नसीब हुई हो, लेकिन कार्यालय में बात करेंगे तो गर्मा गर्म समोसे से नीचे नहीं, जैसे नवाबजादे समोसे खाते खाते ही पैदा हुए थे।
1: हाँ ये बात तो है। नहीं खजूरी साहब, ये बात नहीं, आज तो बड़े बाबू। अच्छा, आज तो बड़े बाबू की तरफ से है। बधाई हो बड़े बाबू, बधाई हो।
2: अरे कौन सी ढोलक बजी है हमारे घर में, किस बात की बधाई।
1: बात बाद में, पहले तो हो जाए। हाँ
2: हो जाए हाँ, यहां मुफ्त में बंट रही है, जब जी चाहे हो जाए हाँ।
1: खजूरी, बात दरअसल ये है कि आज बड़े बाबू पर किसी हसीना का चक्कर चल गया है।
2: चक्कर, हसीना का चक्कर, तो ये बात है। अमा भाई आप तो छिपे रुस्तम निकले, आखिर खिजाब ने कमाल दिखा ही दिया।
1: ओफो,
2: इसीलिए मैं सोच रहा था कि इंटीमेट कहाँ महक रहा है।
1: अरे अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंटीमेट किस भकुए ने लगाया है, यहां तो मिट्टी के तेल की खुशबू के अलावा दूसरी कोई सुगंध ही नहीं पहचानते।
2: मजाक छोड़िए बड़े बाबू, बता भी दीजिए कब बज रही है ढोलक।
1: अरे खजूरी तुम ही बताओ, जब कोई बात हो तभी तो बताए, है कि नहीं भला।
2: थोड़ा सा बड़े बाबू लंच करवाना पड़ेगा। हाँ
1: देखो देखो, दूर से बात करो। हाँ दूर से बात करो, मुझे गुदगुदी बहुत लगती है। हाँ गुदगुदी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए।
2: अरे हम किसी से कहने थोड़े ही जा रहे हैं, आपकी कसम हम ही तो आपके चाहने वाले हैं।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, आपकी चाहत की वजह से ही तो ये हो रहा है।
2: छोड़ो यार खजूरी, नहीं बताना चाहते हैं बड़े बाबू तो न बताएं। जब पेट में दर्द होगा तो खुद ही कहेंगे, सुन लो आकर मेरी बात, देख लेना हम भी नहीं सुनेंगे तब।
1: हाँ, जब
2: हाँ
1: दर्द होगा तब देखेंगे।
2: अच्छा चोबे, ये तो बताओ तुम्हें कैसे पता चला चक्कर का?
1: आज सवेरे सवेरे बड़े बाबू गाना गा रहे थे, लड़ी नजरिया लड़ी।
2: अच्छा तो ये बात है, बता दीजिए बड़े बाबू, भगवान कसम अब नहीं रहा जाता।
1: अब तुम ही सोचो खजूरी, हमें तुमसे कोई पर्दा है क्या?
2: नहीं।

0: तो।
1: और फिर पर्दा ही करना होता तो मैडम सरिता से करते।
0: हाँ हाँ और क्या,
1: मैं भला तुमसे क्यों छुपाऊंगा? अगर कोई बात होती तो मैं तुम्हें ना बताता।
0: लेकिन लड़ी नजरिया लड़ी वाली खबर।
1: अरे ये सब चोंचले हैं चौबे के, मैंने तो बस यूं ही गुनगुना दिया था जरा।
0: जब आप गाना गा रहे थे।
1: गा नहीं, गुनगुना रहे थे।
0: हाँ, वही, जब आप गुनगुना रहे थे तो आपके दिल में कुछ ऐसा कुछ वैसा, मेरा मतलब कुछ कुछ।
1: कुछ नहीं हो रहा था खजूरी, मैं सच कहता हूं, कुछ नहीं हो रहा था।
0: सोच लीजिए बड़े बाबू, ऐसे वैसे गाने कोई यूं ही नहीं गाता। जब भीतर कुछ कुछ होता है तभी ऐसे गाने मुंह पर आते हैं।
1: ओफो, गाना ना हुआ पानी हो गया, जो जब मन हुआ मुंह में आ गया। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा था मेरे अंदर।
0: तो फिर आपने देशभक्ति का गीत क्यों नहीं गाया, जबकि जरूरत है आजकल देशभक्ति के गानों की।
1: ओफो,
0: देखिए देखिए, परेशान मत होइए, चोबे गया है बाहर, तब तक मुझे बता डालिए।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
0: मान लिया, लेकिन अपना भी ये दावा है कि देखकर जान लेते हैं भीतर का हाल, उठ रहा है कहां कितना उबाल।
1: मारे गए बेमौत, अब साहब क्यों बुला रहे हैं? इसी वक्त बुलाना था इनको भी।
0: कहीं साहब तक तो बात नहीं पहुंच गई, संभल कर बड़े बाबू।
1: आपने मुझे बुलाया साहब?
2: हाँ बुलाया है, बैठो बैठो, डोंट वरी डोंट वरी, तुम्हारे जैसे मेहनती और चरित्रवान आदमी पर ऑफिस को गर्व है।
1: धन्यवाद साहब।
2: इधर तुम्हारा काम धंधा, मेरा मतलब ऑफिस का काम कैसा चल रहा है?
1: ठीक ही चल रहा है आपकी मेहरबानी से।
2: तुम्हारी उम्र कितनी है बड़े बाबू?
1: साहब मैं समझा नहीं, आप ये सब क्यों पूछ रहे
2: यू
1: हैं?
2: ही फॉर जनरल नॉलेज।
1: साहब बस ये समझ लीजिए, पुराना खाया पिया है, इसलिए अब की फागुन में 40, 8, 48 वर्ष।
2: आपके बच्चे भी काफी बड़े बड़े होंगे।
1: जी आपकी मेहरबानी से।
2: इस उम्र में आपके इश्क के चर्चे बहुत खराब बात है, बहुत खराब बात है।
1: जी मैं कुछ समझा नहीं।
2: देखो बड़े बाबू, आज ऑफिस में सवेरे से आपके इश्क की चर्चा है, जिधर देखिए उधर बस एक ही खबर। माजरा क्या है, जरा मुझे भी तो बताइए।
1: साहब ये आप क्या कह रहे हैं? भला सोचिए, मैं इश्क कैसे कर सकता हूं? आज तक साहब मैंने किसी लड़की की तरफ तो क्या, बीवी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा है।
2: होता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग नहीं देखते हैं आंख उठाकर, लेकिन इंसान का काबू अपने जज्बात पर नहीं होता, कब क्या हो जाए किसी को खबर नहीं होती। डोंट वरी डोंट वरी, बताओ भी।
1: अब तो कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा। अब साहब आपसे क्या छिपाना, यूं ही पता नहीं क्यों मन में आज पुरानी यादें किलोले करने लगी।
2: फिर क्या हुआ?
1: फिर मन में उमंगे,
2: पतंगे?
1: नहीं साहब, उमंगे उमंगे उठने लगी, गिरने लगी, अंगड़ाइयां लेने लगी।
2: फिर?
1: फिर कुछ नहीं साहब।
2: ओहो नॉनसेंस, वेयर इज क्लाइमेक्स, आगे क्या हुआ?
1: साहब साहब फिर मुझे लगा मेरी रगों में सपरेटा नहीं, प्योर खून बह रहा है। मुझे भी अपने सांसों में बदबू नहीं, खुशबू महसूस होने
2: फिर
1: लगी।
2: क्या हुआ बड़े बाबू, फिर क्या हुआ? ठीक से बैठिए ना।
1: हाँ हाँ ठीक है।
2: नहीं, पैर कुर्सी के नीचे।
1: सॉरी सॉरी सर, बाबू हूं ना, इसी से आदत है।
2: कैरी ऑन कैरी ऑन।
1: फिर मुझे ऐसा लगा मैं आकाश में किसी किसी
2: ओहो बताइए ना।
1: किसी परी के साथ उड़ रहा हूं, सारी दुनिया से बेखबर उससे बातें कर रहा हूं।
2: क्या बातें कर रहे हो?
1: मैं उसे कल की सब्जी के भाव बता रहा था, परमल 8 रुपए किलो, कद्दू 4 रुपए, लौकी।
2: ओहो, आप भी किस मौके पर कहां की बात ले बैठे, कहां गया है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड?
1: साहब अब की वो मुझे मिल गई तो मैं उससे कहूंगा, प्रिय हम तुम इसी अवस्था में सदियों तक विचरण करते रहे।
2: बड़े बाबू मेरा हाथ छोड़िए।
1: ओह सॉरी सर।
2: और वो गाना
1: साहब? वही गाना मैं गुनगुनाता हुआ चला आ रहा था, लड़ी नजरिया लड़ी, लड़ी नजरिया लड़ी।
3: अरे उठो भी, क्या सोते हुए लड़ी नजरिया लड़ी गाते जा रहे हो? चार लौंडों के बाप हो गए, नजरियों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे मैं कहती हूँ दुनिया में लड़ाइयों के खत्म होने के ऐलान हो रहे हैं, एक आप हैं, नजरियों की लड़ाई लड़े जा रहे हैं।
1: बात यह है मुन्ने की अम्मा, मैं सोते में एक बहुत प्यारा चटपटा सपना देख रहा था।
3: सोते में सपने तो देखोगे ही, जागते में तो मैं भूतनी बनी खड़ी रहती हूँ तुम्हारे आगे। जरा मैं भी तो सुनू, किससे नजरिया लड़ा रहे थे?
1: तुम तो जानती ही हो, मैं भला किससे नजरिया लड़ा सकता हूँ?
3: हाँ हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारे चोंचले।
1: मेरा विश्वास करो भाग्यवान, मैंने किसी से नजरें नहीं लड़ाई।
3: तो फिर लड़ी नजरिया लड़ी?
1: वो तो सपने में जवानी की पुरानी यादें तरोताजा करने के लिए, कसम से।

लड़ी नजरिया लड़ी। अभी आप सुन रहे थे राजेश भदौरिया की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गुरुमीत रामलमीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की प्रस्तुति।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
0: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म हेट स्टोरी 4 से। इसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन ने। गीत मनोज मुंतशिर और संजय गुप्ता का है, संगीत आरको का।

अगला गाना फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से है। इसे गाया है पलक मुछाल ने, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा, संगीत अमाल मलिक का।

अंतराल के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बागी 2 फिल्म का गाना। अंकित तिवारी और श्रुति पाठक की आवाजों में, गीत कुमार का है, संगीत गौरव रोशन का।

अब सुनते हैं राघव चैतन्य और प्रीतम की आवाज में एनिमल फिल्म का गाना। गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत जैम 8 का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में

0: 7.5 लाख करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे

0: दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए कस्मे वादे फिल्म के इस गाने से। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में प्यासा सावन फिल्म का गाना, गीत संतोष आनंद का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं काश फिल्म का गाना। किशोर कुमार और अनुपमा देश पांडे की आवाजों में, गीत फारूक कैसर का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं कुदरत का कानून फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विद भारती देश की सुरीली धड़कन आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
2: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम को

0: करता चमर होगा।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगे, बरखुरदार, अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। साथियों, फिल्मों में निर्देशक ही वो सूत्रधार होता है जो कैमरे के पीछे रहकर पूरी टीम का मार्गदर्शन करता है, कलाकारों के अभिनय को आकार देता है। निर्देशक की सोच, दृष्टि और सृजनात्मकता ही किसी भी फिल्म की आत्मा होती है। आज हम ऐसे ही प्रतिभाशाली निर्माता निर्देशक के जीवन कार्य और योगदान पर बातें करेंगे, जिन्होंने अपने अनोखे दृष्टिकोण और सृजनात्मकता से सिनेमा की दुनिया में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। साथियों, हिंदी सिनेमा में जहां एक ओर बड़े बजट की भव्य फिल्में दर्शकों को आकर्षित करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ निर्देशक अपनी सादगी भरी कहानियों और मानवीय भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत करके दर्शकों का दिल जीत लेते हैं।

जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के फनकार, वेरी टैलेंटेड निर्माता निर्देशक आनंद एल राय की, जिन्होंने साधारण मिडिल क्लास लोगों की कहानियों को रुपहले पर्दे पर नया नजरिया दिया है।

साला गर्दा उड़ा दिया। अरे गर्दा उड़ा दिया। बेटा गर्दा।

28 जून साल 1971, दिल्ली में जन्मे आनंद एल राय, इनका परिवार भारत पाक विभाजन के दौरान सीमा पर खिंची दीवार के बाद सिंध छोड़कर देहरादून चला आया और कुछ समय बाद आनंद राय के पिता ने दिल्ली में अपना आशियाना बना लिया। आनंद राय का पालन पोषण दिल्ली में हुआ। वहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर वे नौकरी करने लगे। साथियों, यूं तो आनंद की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ कमी सी महसूस होती रही। दरअसल उनका झुकाव तो रचनात्मक क्षेत्र की ओर था,

आनंद अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए। श्रोताओं, बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का फील्ड छोड़कर फिल्मी दुनिया में करियर बनाया है। आनंद एल राय भी उनमें से एक हैं। मुंबई आकर आनंद राय ने अपने बड़े भाई रवि राय, जो कि उस समय टीवी धारावाहिकों का निर्देशन कर रहे थे, उन्हें असिस्ट करना शुरू कर दिया। पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद आनंद ने अपने निर्देशन की शुरुआत की। यह यूं कहिए कि आनंद ने बतौर निर्देशक अपना डेब्यू किया साल 2007 में साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर्स के साथ। यहां आपको बताते चलें कि फिल्म स्ट्रेंजर्स अल्फ्रेड हिचकॉक की स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन पर बेस्ड थी, लेकिन आनंद राय की यह डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई, जिसमें जिमी शेरगिल, के मेनन, नंदना सेन, सोनाली कुलकर्णी जैसे कलाकार थे।

साल 2008 में जैकी श्रॉफ और परमीत सेठी अभिनीत आनंद राय की अगली फिल्म आई थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई और दर्शकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया।

बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म देने वाले आनंद एल राय, इनके साथ अब कोई निर्माता काम करने को तैयार नहीं था। लगातार फेलियर होने पर आनंद राय ने हार तो नहीं मानी, लेकिन हाँ, 3 साल का ब्रेक जरूर ले लिया। इन 3 सालों के ब्रेक के बाद आनंद राय के करियर का टर्निंग पॉइंट आया साल 2011 में, जब उन्होंने तनु वेड्स मनु फिल्म के निर्देशन के साथ अपनी ग्रैंड वापसी की और हर किसी को अपने डायरेक्शन का दीवाना बना दिया।

आर माधवन और कंगना रनौत अभिनीत ये फिल्म आनंद राय की पहली कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में जबरदस्त कमाई की। दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत

आनंद राय बॉलीवुड के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से हैं जो रीमेक के दौर में नई और असल कहानियों पर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। वो खुद भी बड़े सिंपल अंदाज में जीवन जीते हैं।

साथियों, उनका कहना है कि अगर वो साधारण जिंदगी नहीं जिएंगे तो अपने अंदाज में फिल्में नहीं बना पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं साल 2013 की। इस साल आनंद राय ने अपने निर्देशन में दूसरी कमर्शियली हिट फिल्म दी रांझणा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के ऑपोजिट साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार धनुष ने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की, जिन्हें दर्शकों ने तहे दिल से स्वीकार किया और इस फिल्म में अभिनेता धनुष के अभिनय की भूरी भूरी प्रशंसा हुई।

आपको बता दें कि फिल्म रांझणा दुनिया भर में करोड़ों की कमाई करने वाली साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाऊ हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की बहुत सराहना हुई और फिल्म रांझणा ने फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आनंद एल राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया।

संगीत सुनने के शौकीन बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर आनंद एल राय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 में आपने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स का निर्देशन किया, जो फिल्म तनु वेड्स मनु का सीक्वल था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त

श्रेष्ठ रही। दर्शकों से इस फिल्म को भरपूर प्यार और सराहना मिली। ये फिल्म साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जिसने दुनिया भर में करोड़ों में जबरदस्त कमाई की। खास बात ये रही साथियों कि अपनी रिलीज के समय भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये महिला प्रधान फिल्म थी। आनंद राय की इस तीसरी जबरदस्त सफल फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अपना दूसरा नामांकन दिलाया।

आनंद एल राय को सफलता काफी उतार चढ़ाव के बाद मिली। भारतीय सिनेमा में कई निर्देशक हैं, लेकिन चर्चा में कुछ ही रहते हैं जिनमें आनंद एल राय का नाम भी शामिल है। तनु वेट्स मनु, रांझणा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्म्स के निर्देशक आनंद एल राय बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक है।

आपने साल 2018 में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसे ए लिस्ट स्टार कास्ट के साथ फिल्म बनाई जीरो। और साथियों, आनंद राय की पिछली सफल फिल्मों के कारण रिलीज से पहले हाई प्रमोशन के बावजूद आनंद राय की ये फिल्म कुछ खास नहीं चल सकी।

आनंद राय निर्देशित इस फिल्म में धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को कोविड के दौरान लॉकडाउन के कारण सिनेमाघरों में रिलीज किए बिना डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज किया गया, जिसे दर्शकों की, आलोचकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और समीक्षा मिली।

साल 2022 में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को लेकर आनंद एल राय ने फैमिली कॉमेडी फिल्म रक्षाबंधन निर्देशित की।

और अब साल 2025 में आने वाली फिल्म तेरे इश्क में, जो सीक्वल है फिल्म रांझणा का और जिसके निर्माण और निर्देशन का दारोमदार है आनंद एल राय पर, देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाल मचाती है। तो हमें इंतजार है आनंद एल राय की आने वाली फिल्मों का। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक आनंद एल राय पर। शोध, आलेख और स्वर शिफाली कपूर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। आज के फनकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। पंचम के गानों का अपना एक संसार है, कुछ चुलबुले गाने, कुछ उदास जो आंसुओं की नमी से भीगे हैं, कुछ ऐसे गाने जिनमें जोश छलक छलक पड़ता है, कुछ ऐसे गाने जिनके कंधों पर सर रखकर आप अपने डूबे हुए दिल को सहारा दे सकते हैं। पंचम गानों के जादूगर थे। आज के छाया गीत में पंचम के कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप पंचम को खूब मिस करेंगे, बेकरार होकर याद करेंगे और नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे ईश्वर का जिसने हमें दिया ऐसा विरला संगीतकार, जिसके हैं ऐसे महकते नगमे।

तो बीतते जाते हैं पल, कैलेंडर के पन्ने बदलते चले जाते हैं। जाने क्यों कुछ पल कभी बीतते नहीं, वो मन के आकाश पर ठहर जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं कुछ लम्हे। वो न कभी अतीत बनते हैं न कभी यादों में तब्दील होते हैं, वो लम्हे बस मन के कैनवस पर धड़कते चले जाते हैं।

0: सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ।
1: और आंसू भी, दुनिया भर के दुख, धोखे, तकलीफें, अफसोस जमा होते रहते हैं मन के किसी कोने में। समझ में नहीं आता कि कब कैसे ये सारा दुख घुलेगा। फिर किसी दिन बहता है जीवन का सारा दुख आंखों से। आंखों में सपने भी होते हैं और जीवन का ये खारापन आंखों में ही छिपा होता है।

इंतजार का दायरा बढ़ता चला जाता है, इंतजार की परछाई बड़ी होती चली जाती है। कभी कभी ये इंतजार खत्म ही नहीं होता। दिन बोझिल होते चले जाते हैं, शामें उदास हो जाती हैं और रातें एकदम सुनसान। जिसका है इंतजार, जब वो मिल जाए तो खिल उठता है दिल, चमक जाते हैं लम्हे और महक उठते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
2: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

गानों का अपना नशा होता है। जरूरी नहीं है कि ये गाने हमें बार बार सुनाई ही पड़े। कई गाने सुने बरसों हो जाते हैं, फिर अचानक किसी गाने की कोई लाइन कहीं सुनाई पड़ जाती है और अटक जाता है मन। गानों के साथ जाने कैसा रिश्ता होता है हमारा, जैसे कोई भूला हुआ ठिकाना, जैसे भूली बिसरी कोई खुशबू, जैसे कोई भूली

घर से निकलते ही मन सारी उलझनों से बाहर निकल आता है। फिर हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। सफर में हूँ तो अलग ही गाने जुबां पर आते हैं।

0: और फिल्म नमकीन। आज का छायागीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
2: वज्रदंती वज्रदंती वीको वज्रदंती, वीको पाउडर वीको पेस्ट, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी।
3: याद रखिए, मसूड़ों में जान तो दांतों की शान।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र

0: सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
2: Meri Seshal ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke sath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
1: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honor on Prime Minister Modi. Prime Minister Modi dedicated the honor to all the countries who are committed to environmental conservation and fighting climate change. Later in the day, Prime Minister Modi addressed the National Assembly of Seychelles. Speaking on the occasion, the Prime Minister said that India's vision is captured in the idea of Mahasagar, which recognizes that our futures are interconnected and interdependent.